ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज।

न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।

0: शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। परम मनोहर हे शिव शंकर, महिमा अपरंपार, सकल जगत में गूंज रही तेरी जय जयकार।

पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा माँ की निर्मल और अविरल धारा हमारे जीवन को गति ही प्रदान नहीं करती, बल्कि इसके जल का आचमन हमारे मन को शीतल और पवित्र कर देता है।

0: मन में शिव को धार कर काम करो दिन रात, भक्तों के रक्षक हैं भोले, बनेगी बिगड़ी बात। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, सतीश डोलकर और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार।
1: कानून शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए कानून के खिलाफ विद्रोह करना या सरकारी आदेशों की अवहेलना करना स्वाभाविक रूप से गैर कानूनी समझा जाता है। जो भी देशभक्त आवश्यक सुधार लाने का सोचता है, उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो महसूस करता है कि कानून की अवज्ञा करना उचित नहीं है और इस प्रकार वह विकट स्थिति में उलझ जाता है। गांधी जी भी जब ऐसी ही विकट स्थिति में फंसे थे, तभी उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इस प्रकार निष्क्रिय विरोध, बाधा या सत्याग्रह के आविष्कार का श्रेय उन्हीं को है और उन्होंने ही इसे अपनी तपस्या से निखार दिया। यह कहना कठिन है कि न्यायोचित होने पर भी सत्याग्रह हर मौके पर किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो हर जगह यह कारगर हो सकता है या नहीं। लेकिन यह बात सबको माननी पड़ेगी कि इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं निहित हैं। सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा इतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए कि सत्याग्रही के मस्तिष्क में केवल कर्तव्य पालन की ही भावना विद्यमान रहे। सब कुछ के बावजूद कर्तव्य करने की भावना से ही उसे अभिभूत रहना चाहिए। इसी को नैतिक बल, सत्यवादिता और चरित्र कहते हैं। यह नैतिक गुण पढ़ने लिखने या विद्वता प्राप्त करने से ही नहीं आ जाता, यह तो एक आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे चरित्र निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनियां अत्यंत उपयोगी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझसे मेरे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि विशुद्ध धार्मिक और दार्शनिक जीवन का मेल

0: रोजमर्रा के जीवन से नहीं बैठता। यदि मोक्ष, जो कि मानव का उच्चतम लक्ष्य है, प्राप्त करना है तो लौकिक इच्छाओं और इस संसार का परित्याग करना होगा। एक ही समय में दो स्वामियों, ईश्वर और संसार की सेवा नहीं की जा सकती। मैं इसका अर्थ ये समझता था कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे शीघ्र इस संसार का त्याग कर देना चाहिए। इससे मैं सोचने को मजबूर हो गया। मैंने अपने से ही यह प्रश्न पूछा, क्या मेरा धर्म मुझसे यह कहता है कि पूर्ण मानवत्व को पहुंचने के लिए मुझे इस संसार का त्याग करना होगा? यदि मनुष्य ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से संसार के हितों से भी तादात्म्य स्थापित करना पड़ेगा और उसके लिए कर्म भी करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पूर्ण तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि तीन तत्वों में से केवल दो ही तत्वों के बीच तादात्म्य स्थापित होता है और वे हैं जीव और ब्रह्म। तीसरा तत्व माया अर्थात संसार बाहर छूट जाता है। इस प्रकार मैंने इस प्रश्न का अपने लिए हल ढूंढ निकाला है। मेरा मत है कि संसार की सेवा करना ईश्वर की इच्छा का पालन करना है और यही मोक्ष का निश्चित मार्ग है, तथा केवल संसार में ही रहकर इस पर चला जा सकता है, संसार को छोड़कर नहीं। जैसी कि विधाता की इच्छा है, संसार को क्रमशः सत्पथ की ओर प्रवृत्त करने के लिए कर्म करना ही होगा, लेकिन यह कर्म कर्तव्य बंधन का कारण न बने इस उद्देश्य से फल प्राप्ति की आशा किए बिना ही निष्काम भाव से इसे करना चाहिए।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। दिन भर की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:15 आज हम आपको सुनवाएंगे श्री जीएस निगम की वार्ता। विषय रहेगा कीटनाशी और उनका वर्गीकरण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, आंखों के लिए पोषण का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वाणी अग्रवाल। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। कार्यक्रम होगा आज के कलाकार पूर्वाहन 11:00। ये कार्यक्रम आज अभिनेता आर माधवन पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम 11:30 पर आप सुनेंगे। कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत और आज का विषय रहेगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों का मित्रवत व्यवहार जरूरी है।

महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज चर्चा की जाएगी सजग अभिभावक, स्वस्थ और सुरक्षित बच्चे। क्रम रहेगा मेरी माटी मेरा देश, फैशन ब्यूटी और

रेसिपी टाइम। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में हमारी बहनें सुन सकेंगी वार्ता गृह वाटिका एवं बागवानी के लाभ। वार्ताकार होंगे सुश्री शारदा सिंह।

युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा। विषय रहेगा श्वेत क्रांति, क्रम रहेगा आज का सवाल और नई पहल। इतिहास के पन्नों से क्रम में हम चर्चा करेंगे काकतीय वंश के बारे में और अंत में सुनिएगा चलते चलते। ग्रामेलो कार्यक्रम में 6:00 बजे हमारे किसान भाई वार्ता सुन सकेंगे। विषय रहेगा वर्षा जल का संचयन। वार्ताकार होंगे श्री अमर सिंह गुर्जर। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा विश्व दुग्ध दिवस विषय पर और दूसरा विषय रहेगा अभिभावक हमारे मार्गदर्शक। इसके अलावा आप सुनेंगे सेहतनामा, घरेलू नुस्खे और आज का प्रश्न।

विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। जीवन का आधार है माता पिता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुनीता रानी। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश शाम 7:31 पर। आज सोमवार है, रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत करेंगी विशेषता शर्मा।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम में 8:45 पर और सुरसेता कार्यक्रम में 10:00। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे गीत मंजूषा कार्यक्रम में 9:25 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव की भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे मालिनी और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री जीएस निगम की वार्ता। विषय है कीटनाशी और उनका वर्गीकरण।
1: कीटनाशी वे रसायनिक वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीड़ों को मार दिया जाता है या उनके किए जाने वाली हानि पहुंचाने से रोक दिया जाता है। इन कीटनाशी रसायनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। कीड़ों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर आमाशय विष, स्पर्श विष, धूम्रपान विष प्रयोग में लाए जाते हैं। आमाशय विष कीड़ों के भोजन के साथ उनके आमाशय में पहुंचते हैं तथा शरीर में जहर फैलाकर उसे मार देते हैं, जैसे मेलाथियन 5%, मेथाल पैराथियन 2% आदि। स्पर्श विष, जैसे कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है कि छूने मात्र से ही कीड़े मर जाते हैं, यानी जब जहर कीड़ों पर पड़ता है तो इस प्रकार का विष कीड़ों की खाल, टांग या उन के हिस्से को जोड़ों द्वारा उनके शरीर में पहुंच जाता है और कीड़ों को मार देते हैं, जैसे डाइक्लोरोबास, जिसे न्यूयान भी कहते हैं आदि। धूम्रक विष, जहरीला धुआं। इस प्रकार रसायनों से हवा का संपर्क होते ही हवा जहरीली गैस बन जाती है तथा कीड़े सांस लेते हैं तो जहरीली गैस उसके अंदर सांस द्वारा पहुँच कर उन्हें मार देती है, जैसे सेल्फॉस, इथाइड डाई ब्रोमाइड आदि। आंतरिक सिस्टम जहर

जैसे कि इनके नाम से मालूम हो रहा है कि यह पौधों के संपूर्ण भाग को जहरीला करता है, या इन इस प्रकार जहर जब पौधे पर छिड़का जाता है तो यह पौधों के सिस्टम में पहुंचकर पौधे पूरे को जहरीला बना देता है। यानी जब कोई कीड़ा इस प्रकार के विष छिड़क से युक्त पौधे को किसी भी हिस्से को खाता है या इसका ए रस चूसता है तो कीड़ा मर जाता है। इस प्रकार जहर मेटासिस्टो क्रिलोफास डाई मिथोइट, इसे रोगर भी कहते हैं। इस प्रकार के विष की प्रकृति के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए, जैसे सब्जियों में लगने वाले कीट के विरुद्ध स्पर्श नाशी या आमाशय विष प्रयोग करने चाहिए। उनका चुनाव भी सब्जियों के प्रयोग करने की स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। यदि सब्जियां 2 या 3 दिन में प्रयोग करनी हो तो स्पर्श विष या इसके बाद के समय हेतु आमाशय विष प्रयोग कर सकते हैं। धुआं वाले विष अनाजों में जो भंडार में रखे गए हैं में लगने वाले कीड़े घुन इत्यादि के रोकथाम हेतु प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण इस प्रकार होता है, जैसे भौतिक विष यह रसायन स्वयं जहरीले नहीं होते हैं परंतु कीड़ों के श्वसन छिद्रों में घुसकर इन्हें बंद कर देते हैं, जैसे तेल तथा कीड़ों की खाल को खुश देते हैं जिससे कीड़े के शरीर की आर्द्रता कम हो जाती है, जैसे मिट्टी आदि जीव द्रव्य विष। इस प्रकार के जहर कीड़ों के शरीर में पहुँच कर उनकी प्रोटीन नष्ट कर देते हैं, जैसे पारा कॉपर का मिश्रण आदि। तीसरे श्वसन विष यह जैसे पहले बताया जा चुका है धूम विष हैं, अर्थात जहरीला हवा जो शरीर द्वारा रसायन द्वारा बनती है कीड़ों की श्वास क्रिया को प्रभावित करती है तथा उसे मार देती है। ज्ञान तंत्र विष यह वे विष हैं जो कीड़े के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात तंत्र का तंत्र व उनके तंतुओं को नष्ट कर देते हैं, जैसे पैराथियन आदि। इसके अलावा इस प्रकार के विष भी जिनके संपर्क में आने पर कीड़ों के प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं तथा कीड़ों के बच्चे पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जैसे नीम का तेल। हार्मोन्स विष इसके प्रयोग करने पर कीड़ों के शरीर से हार्मोन्स का निकलना कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या हार्मोन्स निकलना रुक जाता है, जिससे अनुचित वृद्धि के कारण कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में भी किसी सभी विष आते हैं जिनका वर्गीकरण कहीं न कहीं किया जा सकता है तथा कीड़ों को विभिन्न प्रकार से मार सकते हैं। तीसरे प्रकार के वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, जैसे आर्सेनिक कंपाउंड, फ्लोरीन कंपाउंड, गंधक क्लोरीन के कंपाउंड, रासायनिक फास्फेट जैसे मेलाथियन पैराथियन थीमेट मेटासिस्टोक आदि, कार्बामेट कंपाउंड जैसे कार्बोराल आदि, पौधों से प्राप्त विष जैसे नीम ऑयल आदि के अतिरिक्त तेल साबुन धूम्र विष कीड़ों को आकर्षित करने वाले कीट तथा कीट प्रति आकर्षण विष के अतिरिक्त आज तक प्रदूषण को ध्यान में रखकर आज ऐसे कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं जो कीड़ों को मार देते हैं परंतु मानव शरीर पर इनका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है तथा वातावरण पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार कीटनाशक प्राकृतिक पौधों से ही जैसे नीम का तेल लहसुन व तम्बाकू से तैयार कीटनाशक आदि सा ही मारे जाते हैं। कुछ कीड़ों के शरीर के पीस कर इसे घोल को पानी में मिलाकर उसी प्रकार के कीड़ों के ऊपर छिड़का करने से भी कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोवायरस। यह रसायन हीलियोथिस नामक कीड़ की मरी हुई गड़ारों को एकत्र करके पीस कर छान कर उसे NPB वायरस के नाम से जाना जाता है। कीटनाशी का वर्णिका धूम्र दानेदार व तेली के आधार पर किया जाता है। धूल में जैसे मेलाथियन 5%, मिथार पैराथियन 2% आदि। दानेदार में जैसे कार्बोफ्यूरान बोरेट टेंजी आदि। तेलीय घोल इसके अतिरिक्त यह कीटनाशी कहते हैं जिनका छिड़काव पानी में मिलाकर फसलों पर किया जाता है, जैसे इंडोसल्फान 30-35 cc, डाइथिमोट 30 cc, डाइक्लोरोबाज 36 cc, साइपरमेथिन 10 cc, गामा BSC 20 cc,

0: बेसिलस, थिरुजेंसिस, बायोलेप, नीम ऑयल आदि। इनका वर्गीकरण जहरीलेपन के हिसाब से रसायनों के डिब्बे पर बना चिन्ह देखकर किया जा सकता है। लाल रंग का निशान वाले अधिक जहरीले होते हैं तथा नीले का निशान वाले पीले रंग के उनके कम हरे रंग का निशान वाले सबसे कम जहरीले बसरुचि रसायनों की श्रेणी में आते हैं तथा फसलों की अतिरिक्त स्थिति एवं अवस्था को देखकर ही प्रयोग किए जाते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री जीएस निगम की वार्ता। विषय था कीटनाशी और उनका वर्गीकरण। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
2: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
3: गाता एक राम
4: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ।
2: देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
4: बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ।
2: आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
4: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां।
1: दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। आपको याद दिला दें, आज सोमवार है, रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इसे प्रस्तुत करेंगी विशेषता शर्मा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 हुए हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
5: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यान्मार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे, स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे, अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
6: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में

0: अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी।

0: प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारीपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुरवे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.T. Devagowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge, among the members who are completing the term.

0: terms this month. In Maharashtra, ruling Mahayuti Alliance has finalized the seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Maha Vikas Aghari had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats. Shiv Sena UBT 4 seats and Sharad Pawar led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Today is the last day for filing nominations for the Legislative Council polls. Holy relics of the Arahat Sariputra and Arahat Mahamogalana were ceremonially enshrined at the Ganden Teglan Ching Monastery in Ulaanbaatar, Mongolia, on the occasion of Buddha Purnima 2026. Arahat Sariputra and Arahat Mahamogalana are the two chief disciples of Lord Buddha. The Union Ministry of Culture stated that the relics have been brought from India for a 10-day exposition until the 10th of June. The exposition was inaugurated in the presence of Assam Governor Lakshman Prasad Acharya and the Ambassador of India to Mongolia, Atul Malhari Gotsarf. Prime Minister Narendra Modi had announced the exposition during Mongolian President Ukhnagin Khurelsukh's visit to India in October last year. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women wrestlers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Diksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals with dominant victories in their respective finals. India added 3 silver medals through Nikita in the 49-kilogram, Antara in the 65-kilogram and Tania in the 69-kilogram categories. In cricket, Royal Challengers Bengaluru won the IPL title for the second consecutive year, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs. Washington Sundar emerged as the top scorer with an innings of unbeaten 50 of 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज और एआईआर ऐप पर 7:10 हुए हैं. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा. इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता. विषय है आंखों के लिए पोषण का महत्व.
2: आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है. इनके पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी हमारी अपनी है. आंखों को आजीवन स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है. सामान्यतः आंखों का पोषण गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है. नवजात शिशु की आंखें स्वस्थ हों, इसके लिए मां को संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें हरी साग सब्जियां, गाजर, फल, गुड़ एवं दूध प्रचुर मात्रा में होने चाहिए. खाना हो सके तो लोहे की कढ़ाई में पकाएं. जन्म के बाद 4 माह तक नवजात शिशु के लिए स्तनपान सबसे संतुलित आहार है. यदि किसी वजह से मां स्तनपान कराने में असमर्थ है तो बच्चे को डिब्बे का दूध दे सकते हैं या ताजा दूध बिना पानी मिलाए देना चाहिए. स्तनपान के दिनों में मां को भी अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अगर बच्चे को दस्त लग जाएं, तो उसे अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें. विटामिन ए की कमी से आंखों के आगे का पर्दा यानी कॉर्निया सूख जाता है और इसमें जख्म होने से आंखों की रोशनी जा सकती है. 4 महीने के पश्चात स्तनपान के साथ साथ शिशु को दाल सब्जी, केला, सूजी की खीर इत्यादि भी देना शुरू कर दें. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो उसे घर में बना हुआ सभी खाना देना शुरू कर दें. बच्चे को फल, हरी साग सब्जियां, गाजर, अंडा, दूध अवश्य दें. जहां तक हो सके आज के युग के फास्ट फूड खाने से बच्चे को रोकें. अगर बच्चा इसी से

0: पेट भर लेगा तो आवश्यक तत्व उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों में कई बदलाव आते हैं, मोतियाबिंद, पर्दे की बीमारियां इत्यादि होने लगती हैं। इन सब से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। यह चीजें हरी साग सब्जियों एवं ताजे फलों में पाई जाती हैं। इसलिए वयस्क लोगों को भी दिन में 2-3 बार इसका सेवन करना चाहिए। तंबाकू एवं शराब के सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे आंखों की नसें तथा पिछले पर्दे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इनके सेवन से परहेज करें। कई भाई बहन आजकल डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। यह बीमारियां आंखों के भीतरी पर्दे को क्षति पहुंचाती हैं। डायबिटीज होने के 15-20 वर्ष बाद 80% लोगों की नजर में फर्क पड़ने लगता है। आधुनिक इलाज एवं इंसुलिन के प्रयोग से मधुमेह के मरीजों की उम्र काफी बढ़ गई है। आंखों की नियमित जांच, मधुमेह का सही इलाज एवं उपचार तथा खान पान में परहेज बहुत जरूरी है। मधुमेह में मीठे खाद्य पदार्थ, शक्कर, मिठाई तथा मीठे फलों का पूरी तरह परहेज करना चाहिए। वजन को नियमित करने के लिए चिकनाई कम से कम लें तथा उचित व्यायाम जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप होने पर शरीर का वजन कम करना चाहिए तथा उचित इलाज के साथ साथ नमक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। संतुलित आहार ना लेने से मोतियाबिंद कम उम्र में ही आ जाता है। खून की कमी जो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसमें भी मोतियाबिंद कम उम्र में देखा जाता है। खून की कमी से पर्दे पर भी असर पड़ता है और नजर कम हो जाती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी खुराक पर नियमित ध्यान दें ताकि हमारी आंखें आजीवन स्वस्थ रहें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता। विषय था आंखों के लिए पोषण का महत्व। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से समवेत स्वर में इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। देशभक्ति गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: प्रधानमंत्री ने काशी के

0: कांगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने

0: बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा

0: खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7:32 और 10 सेकेंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आप सभी को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पिछले 2-3 दिन से मौसम तो लगभग ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और अगर गर्मी है भी तो इतनी गर्मी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हों। और हम सभी जानते हैं कि जब हम घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उसमें हमारे माता पिता भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, और मौसम चाहे कैसा भी हो उनका ध्यान

हम सबको रखना ही पड़ता है। बच्चे माता पिता का ध्यान रखते हैं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं, और परिवार का मतलब भी यही होता है कि घर परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, बहुत ही मिलजुल कर प्रेम के साथ रहें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को स्नेह करें, प्यार दें और एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल भी रखें। जहाँ तक माता पिता की बात है, अभिभावकों की बात है, तो वो तो हमेशा ही चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, वो भी कम है। और ऐसे कोई माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चों का भला ना चाहते हों। बस समय के साथ में कुछ चीज़ें बदलती हैं और जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से माता पिता या बच्चों के बीच में जो संवाद की स्थिति होती है वो बदलती है। समय की बात कह लें इसको, या फिर एक एजुकेशन की बात कह लें, या यूं कहें कि बच्चा जो घर में सीखता है उससे कहीं ज़्यादा बाहर भी सीखता है। बाहर बच्चे किस संगत में रहते हैं, क्या करते हैं, ये हम माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से समय समय पर पूछते रहें कोई परेशानी तो नहीं है। आजकल बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ज़्यादातर संपर्क में रहते हैं, सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं, और सोशल मीडिया पर आजकल जो कंटेंट्स आप देखते हैं वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। तो किस तरह का कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं और उसका प्रभाव बच्चों पर किस तरह का पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी अभिभावक या माता पिता की बनती है कि उस पर नज़र रखें। कई बार बच्चे ऐसा कुछ चाहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी होती है लेकिन वो माता पिता को बताना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हम कहेंगे तो माता पिता या अभिभावक हमारे बारे में ना जाने क्या सोचेंगे। लेकिन बच्चों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बच्चों को यही सोचना चाहिए कि उनके माता पिता यानी जो अभिभावक हैं वो हमेशा और हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। अभिभावक केवल एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत एक शब्द है, और जिसमें यूं कहा जाए कि बच्चों के लिए या परिवार के लिए अभिभावक या माता पिता एक आधार स्तंभ होते हैं। इनके बिना यानी माता पिता के बिना, अभिभावकों के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माता पिता मार्गदर्शक होते हैं, कहते हैं कि माँ तो बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, वही बच्चे को सिखाती है, और पिता का भी कम योगदान नहीं होता है। घर में जब माँ बच्चे के साथ रहती है और पिता जब बाहर होता है, तब भी कहीं ना कहीं पिता के मन में अपने बच्चों को लेकर, एक अच्छा करने के लिए लेकर, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं, बच्चों के भविष्य के लिए क्या करूं, ये सब दिमाग में चलता रहता है। माता पिता हमारे लिए यानी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से माता पिता के लिए बच्चे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के लिए माता पिता भी महत्वपूर्ण होते हैं, और माता पिता ही वो आधार स्तंभ हैं, या यूं कहें कि वो व्यक्तित्व हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं। माता पिता ही बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो एक उम्र का अंतर होता है, एक अनुभव का जो अंतर होता है, उसे हम कभी नहीं मिटा सकते। तो ये जो अंतर है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसीलिए तो कहते हैं माता पिता कि तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन हमारे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा। यानी वो अपने 50 साल की उम्र के बच्चे से भी माता पिता अगर हैं तो ये कहते हैं कि तू 50 साल का हो गया तो क्या हुआ, हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। और यही जो भाव है माता पिता का, ये भाव ही बड़े बच्चे के लिए, बड़ी उम्र के बच्चे के लिए भी उनके लिए वात्सल्य और ममता से भरा हुआ होता है। तो बच्चा हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए वो छोटा ही होता, उनको ये लगता है कि वो बच्चा है, और यही भाव उन्हें हमेशा ये प्रेरित करता है कि हम अपने बच्चे की देखभाल करें, उसका ध्यान रखें।

और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी ध्यान रखते हैं अपने माता पिता का, खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक बात हमने संस्कार की है, तो माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि घर परिवार में जब रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से रहें। आजकल सोशल मीडिया की हमने बात की तो सोशल मीडिया की वजह से हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पे समय कम दें। ये हम माता पिता से भी कहना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। जो छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पर ध्यान ज़्यादा दें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और उनके मन को टटोलें कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या सोचता है, बच्चा कहीं अकेलापन महसूस तो नहीं करता है। हम अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चा अपने अकेले काम में लगा हुआ है या मोबाइल में लगा हुआ है, तो ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का इस तरह से ध्यान रखें। और हम फिर एक बार यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद, व्यवसाय, जो भी काम है, अगर बच्चा कोई भी काम करता है तो इसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है और हो सकती है। क्योंकि हमने कहा ना कि अनुभव एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अनुभव को नहीं मिटा सकते, और माता पिता का जो अनुभव होता है वो बच्चे के जीवन में हमेशा काम आता है। अब चाहे शादी की बात हो या कोई और काम करने की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, हालांकि बच्चे आजकल होशियार हैं, वो भी समझते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना आकलन कर सकते हैं, वैल्यूएशन करते हैं अपना, और उसी से तय करते हैं कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। और जहाँ तक घर परिवार की बात होती है, तो जैसे पहले शादियाँ हुआ करती थी तो माता पिता ही अगर बेटा है तो उसके लिए बहू ढूंढा करते थे, और अगर बेटी है तो उसके लिए वर ढूंढा करते थे। आजकल भी खूब चल रहा है लेकिन थोड़ा सा समय बदला है, और समय बदलने के साथ साथ ये हो गया है कि आजकल लड़का या बेटा खुद अपनी मर्जी से या अपनी पसंद से शादी कर रहा है, बेटियां भी कर रही हैं। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो भी अपने माता पिता को साथ में लेकर आप ये काम कर सकते हैं। अगर कहीं किसी तरह की कोई इस तरह की बात है कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है या कोई लड़का पसंद आ गया है, तो आप घर में बैठकर माता पिता के साथ बात करें, बताएं कि फला लड़का मुझे पसंद है या फला लड़की मुझे पसंद है। घर परिवार सब मिलना जुलना होना चाहिए जिससे कि पता चलता है, और अगर अभिभावक उसमें शामिल होंगे तो भविष्य में भी आपके लिए एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो आप जीवन में कोई भी काम करें, माता पिता को कभी भी नज़रअंदाज न करें, अपने हर काम में माता पिता को साथ रख के उनकी सलाह लें, और उनकी बात को आप माने या ना माने एक अलग बात है, लेकिन जो वो कहते हैं उस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो जीवन का, जैसा कि हमने कहा ना, चाहे आप व्यवसाय करें, आप पढ़ाई करें, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, व्यवसाय करना है तो कैसे करना है, किस चीज़ का करना है, मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है, लड़का पसंद आ गया है तो कौन पसंद आया है, कैसे पसंद आया है, क्या करता है, ये माता पिता के साथ आप साझा करें, बताएं उनको, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

0: भाई, अगर आप युवा हैं और आपने भी अगर कोई लड़की पसंद कर ली है या लड़का पसंद कर लिया है तो घर में मम्मी और डैडी को ज़रूर बताइए, वो आपकी मदद करेंगे और बहुत अच्छी मदद करेंगे, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, आपके अभिभावक हैं, है ना, आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आसपास की सूचनाओं के साथ मैं हूं आपके साथ विशेष कुमार शर्मा। मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी ने यूपी, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश और आंधी तूफान के साथ तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप निकलने के साथ ही अचानक मौसम में बदलाव का यह चक्र 5 जून तक चल सकता है। अलर्ट जारी किया गया है, इस दौरान तेज हवाएं और बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सप्ताह भर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम देर रात रविवार को घोषित कर दिया। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम जेईई एडवांस के टॉपर बने हैं। परीक्षा में 187,389 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। 179,694 उम्मीदवारों ने 17 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के पेपर वन और पेपर टू दोनों में भाग लिया। परीक्षा में कुल 56,880 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों में 10,107 महिलाएं उत्तीर्ण हुई हैं। ग्रेटर आगरा परियोजना में नगर निगम सदन से शहर के खेल विकास की नई दिशा देने के उद्देश्य से एकीकृत खेल अकादमी यानी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय कर रहा है। नगर निगम सदन की बैठक में आगरा शहर खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिभाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। पिछले कई वर्षों में यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके बावजूद शहर में ऐसी समेकित खेल अकादमी का अभाव है जहां विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय खेल अधोसंरचना एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग सहित अन्य खेलों के लिए अलग अलग स्थानों पर सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि ग्रेटर आगरा क्षेत्र में एकीकृत खेल अकादमी स्थापित की जाती है तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, फिटनेस, आवासीय सुविधा और शैक्षिक व्यवस्थाएं एक ही परिसर में मिल सकेंगे। इससे आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। शहरवासियों को निर्बाध और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को नगर निगम लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में रविवार को नगर आयुक्त ने सिकंदरा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रॉ वाटर इंटेक वेल का निरीक्षण

किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल शोधन प्रक्रिया, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और संयंत्रों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्लांट और जलापूर्ति से संबंधित सभी उपकरणों और व्यवस्थाओं को नियमित निगरानी की जाए तथा कहीं भी किसी प्रकार की तकनीकी या संचालन संबंधी कमी दिखाई दे तो उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाए। रेलवे पीआरओ के अनुसार सुबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन संचालित होगी। रेलवे ने साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ के अनुसार गाड़ी संख्या 04139 और 04140 प्रयागराज दादर प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन प्रयागराज से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को और दादर से 24 मई से 12 जुलाई तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार शाम 5:10 पर चलेगी और देर रात 1:20 पर ईदगाह स्टेशन और शनिवार को रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी। रेलवे ने गाड़ी संख्या 21907 और 21908 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 27 मई से हर बुधवार और काठगोदाम से 28 मई से हर गुरुवार को चलेगी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:55 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 5:50 पर मथुरा जंक्शन और दोपहर 1:50 पर काठगोदाम पहुंचेगी। ट्रेन काठगोदाम से शाम 5:30 चलकर रात 1:05 पर मथुरा जंक्शन और अगले दिन रात 9:00 मुंबई पहुंचेगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। इसमें विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन, कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट, मधुमेह रोधी दवा, हृदय रोगी संबंधी दवाएं और अंग प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय औषध विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार NPPA ने दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत तय की गई हैं। NPPA ने कहा है कि कुछ चुनिंदा फॉर्मुलेशन के लिए दवाओं की कीमत तय की गई है, उन्हें नई दवा की श्रेणी में रखा गया है। आदेश में जिन दवा बनाने वाली और मार्केटिंग कंपनियों का नाम है उन पर यह आदेश लागू होगा। अगर आपके पास एक ही घर में दो पेट्रोलियम गैस यानी LPG कनेक्शन है तो जरा ध्यान दें, एक ही नाम से अब दो कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। एक घर में एक ही LPG कनेक्शन होगा, सोमवार से दूसरा कनेक्शन आपको गैस एजेंसी कार्यालय में सरेंडर करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तीनों ऑयल कंपनियां जल्द ही उपभोक्ताओं को चिन्हित करेंगी। अगर आप कनेक्शन सरेंडर नहीं करते हैं तो आपकी एक कनेक्शन की बुकिंग बंद कर दी जाएगी और मोबाइल पर EKYC का मैसेज आने पर आप इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत एजेंसी या फिर खुद ऑयल कंपनी के पोर्टल के माध्यम से अपने KYC कराएं और बिना KYC आप सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ समेत 9 रूट पर संचालित होने वाली 250 रोडवेज बसें सोमवार से फाउंड्री नगर स्थित सैटेलाइट बस स्टैंड से चलेंगी। ये अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी ISBT पर नहीं जाएंगी और न ही यहां से इन रूटों पर आएंगी और न जाएंगी। शहर में आने वाले यात्री सिटी बसों से आ सकेंगे। फाउंड्री नगर डिपो से भगवान टॉकीज चौराहे और ISBT के लिए 85 सिटी बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार रुचि, पति कैलाश चंद्र, निवासी नंगला मवासी, थाना मटसेना, जनपद फिरोजाबाद।

0: रुचि दिनांक 24 मार्च 2026 से लापता है। रुचि की उम्र 28 वर्ष है। कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, शरीर सामान्य है। रुचि के बारे में कोई सूचना या जानकारी मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना मठसेना, जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार पूनम पुत्री लाखन सिंह, निवासी भीमनगर, गली नंबर 4, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद। पूनम दिनांक 30 मार्च 2026 से सुबह 9:25 से अपने घर से लापता है। पूनम की उम्र 34 वर्ष है। कद 5 फीट, रंग गेहुआ है, चेहरा सामान्य है, शरीर सामान्य है। घटना के समय पूनम ने बादामी रंग का सूट और ग्रे रंग की शलवार पहनी हुई थी। पूनम के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार सोना शर्मा, निवासी गली नंबर 2, ओम कॉलोनी, निकट बम्बा चौराहा, थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद। सोना शर्मा दिनांक 31 मार्च 2026 से अपने घर से लापता है। सोना की उम्र 23 वर्ष है। रंग गोरा है, शरीर एकहरा है, आंखें सामान्य है। कद 5 फीट 6 इंच है। सोना के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ठीक 8 बजे हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात,

0: और कर्नाटक में चार चार सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी

0: हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इनिशिएटिव इन द कंट्री. अंडर दिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम फार्मर्स रिसीव 6,000 रुपीज एनुअली डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स. मोर देन 4,28,000 करोड़ रुपीज हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट्स ऑफ अराउंड 9,50,00,000 फार्मर फैमिलीज. द स्कीम्स लाइक पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन वेर ऑल्सो लॉन्च टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम थ्रू मल्टीपल सोर्सेज. द एफर्ट्स लाइक पीएम कृषि सिंचाई योजना एंड द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैव स्ट्रेंथेंड इरिगेशन एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी. सिंस 2014-15 नियरली 26 crore soil health cards have been issued till March this year. The Fasal Bima Yojana has helped nearly 23 crore farmers with crop insurance claims worth 1,92,000 crore rupees. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana is providing a monthly assured pension of 3,000 rupees to a small and marginal farmers. Talking to Akashwani News, a beneficiary of Uttar Pradesh hailed the scheme, saying that it is beneficial for

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की एक

0: एक सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजराए डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया PM किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: किसान मानधन योजना चल रही है बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो

0: के हिसाब से।
1: कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने एमएसपी को पैदावार से मुताल्लिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौन हैदर।
2: मशहूर मारूफ गुलकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
3: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की।

0: मॉडल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह। इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैन अल-अक़वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेर-आब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन औलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIRF पर सुनते हैं। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार इस खूबसूरत गीत के साथ।

नूरी फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। जानेसार अख्तर के गीत को संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। फिल्म का नाम है राजकुमार, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: राजकुमार फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत एक विज्ञापन संदेश के बाद।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी की धुन पर इंदिवर की गीत रचना। फिल्म का नाम है समझौता। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और मुकेश।
4: बड़ी दूर से

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और मुकेश की। फिल्म का नाम था समझौता। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और हम आपको सुनवा रहे हैं सदाबहार फिल्मी गाने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और सदाबहार गीत। इसे गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। गीत इंदिवर का है, संगीत शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है पहचान।

सुन रहे थे पहचान फिल्म का गीत। गीत लिखा था इंदिवर ने और इसकी तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई थी। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको याद दिला दें 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा। इसमें हम आपको पुराने फिल्मी गीत सुनवाएंगे।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 9:15 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
1: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकरबी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर, करवी, मऊ, राजापुर व मानिकपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, PG कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गढ़ थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक

0: आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी बांगर चिलौटा मुस्तकिल और रायपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गाँव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुँचा, वहाँ अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज वन विकल्प चुने, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांव और जलापूर्ति पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हो तो यहाँ के समय आप बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांव में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत दो मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2024 26 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री

0: दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 9:25 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, गुलशन बाबरा के बोल, रवि की धुन, फिल्म का नाम मॉडर्न गर्ल।

मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर। गीत लिखा था गुलशन बाबरा ने, धुन बनाई थी रवि ने। रवि की तर्ज पर आइए आप सुनते हैं साहिर की गीत रचना। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिर का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धुन बनाई थी रवि ने, फिल्म का नाम था आदमी और इंसान, मिट्टी में सोना। इस फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले की आवाज है, बोल हैं राजा मेहंदी अली खां के, संगीत ओपी नैयर का।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत ओपी नैयर की तर्ज पर। फिल्म का नाम था मिट्टी में सोना। धर्मात्मा फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इंदिवर के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, आवाज़ें हैं मुकेश और कंचन की।

कल्याण जी आनंद जी की तर्ज पर आप सुन रहे थे इंदीवर की गीत रचना। आवाजें थी मुकेश और कंचन की। फिल्म का नाम था धर्मात्मा। गीत मंजूषा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

इश्क पर जोर नहीं। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गायिका थी लता मंगेशकर, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने मॉडर्न गर्ल, आदमी और इंसान, मिट्टी में सोना, धर्मात्मा, इश्क पर जोर नहीं फिल्मों के गीत सुने। इन गीतों को आवाजें दी थीं मुकेश सुमन।

कल्याणपुर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, कंचन और लता मंगेशकर ने। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम।

9:45 हुए हैं। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरला शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सरला शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर सरला शर्मा।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सरला शर्मा के गाए ब्रज लोक गीत। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10 बजे ही आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरसरिता और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। नसीब फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ें हैं अनवर, सुमन कल्याणपुर और डॉक्टर कमलेश अवस्थी की।

0: आप सुन रहे थे नसीब फिल्म का गीत। आवाजें थी अनवर, सुमन कल्याणपुर और डॉक्टर कमलेश अवस्थी की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बेटी बेटे इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं, शैलेंद्र के बोल थे, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।

सुरसरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं विश्वास फिल्म का एक गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है, आवाजें हैं मनहर उदास, सुमन कल्याणपुर और साथियों ने।

ये दो युगल आवाजें थीं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। आवाजें थीं मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम था विश्वास। दादा फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत रचना महेंद्र दहलवी की है, संगीतकार उषा खन्ना, आवाज सुमन कल्याणपुर की।

ये आवाज थी सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम था दादा। गीत लिखा था महेंद्र दहलवी ने, धुन बनाई थी उषा खन्ना ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी की गीत रचना। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। प्रस्तुत है वायलिन पर आपका बजाया राग मारू बिहाग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित डी के दातार का राग मारू बिहाग में वायलिन वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओ, अब समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त करिमा श्याक के। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिनकी मुस्कान में सादगी है, आवाज में अपनापन है और अभिनय में गहराई। ये कलाकार दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों तक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रंगनाथन माधवन की, जिन्हें हम प्यार से आर माधवन या मैडी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर बिहार, अब झारखंड में हुआ था। माधवन उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के अपने काम और व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

माधवन की पढ़ाई लिखाई और शुरुआती जीवन भी काफी प्रेरणादायक रहा। वे केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहे बल्कि युवावस्था में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। कॉलेज के दिनों में वे एनसीसी से जुड़े और महाराष्ट्र के श्रेष्ठ एनसीसी कैडेट्स में भी उनका नाम आया। कहा जाता है कि वे शुरू से ही आत्मविश्वासी, मेहनती और सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति रहे। यही गुण बाद में उनके अभिनय में भी दिखाई दिए, चाहे रोमांटिक किरदार हो, गंभीर हो, भावुक हो या बिल्कुल अलग चुनौती वाला।

दोस्तों, माधवन का करियर टेलीविजन से शुरू हुआ। उन्होंने छोटे पर्दे पर काम करते हुए अपनी पहचान बनाई और फिर फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। तमिल फिल्म अलाई पायुथे ने उन्हें बड़ी पहचान दी। इस फिल्म में उनका सहज और दिल को छू लेने वाला अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। हिंदी सिनेमा में वे रहना है तेरे दिल में से युवाओं के दिलों में उतर गए। मैडी का किरदार आज भी दर्शकों को याद है। इसके बाद उन्होंने रंग दे बसंती, गुरु, थ्री इडियट्स, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई।

आर माधवन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे हर किरदार को बहुत ही सहजता से निभाते हैं। वे किसी किरदार को केवल अभिनय की तरह नहीं करते, बल्कि उसे जीते हुए दिखाई देते हैं। थ्री इडियट्स में फरहान का किरदार हो, जो अपने सपनों के लिए आवाज उठाता है, या तनु वेड्स मनु में शांत, समझदार और संवेदनशील मनु, माधवन हर भूमिका में एक सच्चाई लेकर आते हैं। बाद के वर्षों में फिल्म विक्रम वेधा और रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। रॉकेट्री में उन्होंने अभिनय के साथ लेखन, निर्देशन और निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाई। इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म रामजी लंदन वाले का ये गीत।

दोस्तों, अगर इनके निजी जीवन की बात करें तो माधवन का व्यक्तित्व पर्दे से बाहर भी उतना ही सरल और संतुलित नजर आता है। उनकी पत्नी का नाम सरिता बिरजे है। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब सरिता ने माधवन की कम्युनिकेशन क्लासेस अटेंड की थी और बाद में ये रिश्ता विवाह तक पहुंचा। दोनों ने वर्ष 1999 में शादी की। उनके बेटे वेदांत माधवन एक सफल तैराक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। माधवन अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं और अक्सर अपने बेटे की मेहनत, अनुशासन और उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते दिखाई देते हैं।

दोस्तों, सम्मानों की बात करें तो आर माधवन ने अपने लंबे करियर में कई पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, SIIMA अवार्ड्स और कई अन्य सम्मान मिले हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए उन्हें निर्देशक और अभिनेता के रूप में विशेष सराहना मिली। वर्ष 2023 में उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया।

दोस्तों, सम्मानों की बात करें तो आर माधवन ने अपने लंबे करियर में कई पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, SIIMA अवार्ड्स और कई अन्य सम्मान मिले हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए उन्हें निर्देशक और अभिनेता के रूप में विशेष सराहना मिली। वर्ष 2023 में उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और हाल ही में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किए जाने की घोषणा भी हुई। आर माधवन की यात्रा हमें बताती है कि सादगी, मेहनत और सही चुनावों से कलाकार केवल स्टार नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाला व्यक्तित्व बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार को यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त करिमा शाके को दीजिए इजाजत और आप आनंद लीजिए आर माधवन की हाल ही की फिल्म के इस गीत का।

आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त गरिमा शाक। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो जीवन का सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता होता है, माता पिता और बच्चे का रिश्ता। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वह अपने माता पिता की आवाज़ पहचानता है, उनका स्पर्श महसूस करता है और धीरे धीरे उसी माहौल में बोलना, चलना, मुस्कुराना और जीवन को समझना सीखता है। आज के दिन वैश्विक अभिभावक दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बच्चे को बड़ा करना केवल उसकी ज़रूरतें पूरी करना नहीं है, केवल अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल या अच्छी सुविधाएं देना ही पेरेंटिंग नहीं होती है। बच्चे को प्यार, समय, अपनापन और समझ भी उतनी ही जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं, इन्हें क्या समझ आता होगा, लेकिन सच ये है कि बच्चे बहुत कुछ महसूस करते हैं। वे हमारे बोलने का तरीका, हमारा गुस्सा, हमारा धैर्य, हमारा प्यार सब देखते और सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों का मित्रवत व्यवहार बहुत जरूरी है। यानी माता पिता ऐसे हों जिनसे बच्चा डर कर नहीं, भरोसे से बात कर सके, अपनी खुशी भी बता सके, अपनी गलती भी बता सके और अपनी परेशानी भी खुलकर कह सके। तो आइए इसी प्यारे से विचार के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो बच्चों के सच्चे और मासूम मन को बहुत ही सुंदर तरीके से सामने रखता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें आज हमने बात की थी कलाकार आर माधवन की। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। और आज

सच में दोस्तों, बच्चों का मन बहुत ही साफ होता है। वे जो महसूस करते हैं वही बोल देते हैं। उन्हें बनावट नहीं आती, उनकी हंसी भी सच्ची होती है और उनका रोना भी सच्चा होता है। इसीलिए बच्चों को समझने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कई बार बच्चा जिद करता है, रोता है या चुप हो जाता है। उस समय सिर्फ डांटना आसान होता है, लेकिन समझना थोड़ा जरूरी होता है। हो सकता है बच्चा थका हो, डरा हो, कुछ कहना चाहता हो या उसे अटेंशन की जरूरत हो। जब माता पिता बच्चे की बात आराम से सुनते हैं तो बच्चा महसूस करता है कि मेरी बात की वैल्यू है। वह धीरे धीरे अपने मन की बातें शेयर करना सीखता है। अगर घर में हर बात पर डांट मिले तो बच्चा बातें छुपाने लगता है, लेकिन अगर घर में प्यार और खुलापन हो तो बच्चा अपनी गलती भी बताता है और अपनी परेशानी भी। मित्रवत व्यवहार का मतलब ये नहीं कि बच्चे को कुछ भी करने दिया जाए। इसका मतलब है कि बच्चे को प्यार से समझाया जाए, उसकी बात भी सुनी जाए और जरूरत पड़ने पर सही दिशा भी दी जाए। यही तरीका बच्चे को अंदर से मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अब अगला गीत सुनते हैं, उस प्यार और ममता का, जिसमें माता पिता अपने बच्चे को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं।

दोस्तों, माता पिता के लिए उनका बच्चा सच में चांद और सूरज जैसा ही होता है। बच्चे की एक मुस्कान से पूरा घर खिल उठता है। उसकी छोटी सी बात भी परिवार के लिए खुशी बन जाती है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन प्यार का मतलब केवल बच्चे को बचाकर रखना नहीं है। प्यार का मतलब ये भी है कि हम बच्चे को धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सिखाएं। कई बार हम बच्चे की हर बात में फैसला खुद लेने लगते हैं। ये पहनो, ये पढ़ो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ऐसे बैठो, वैसे बोलो। मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन बच्चे को छोटे छोटे निर्णय लेने का मौका देना भी उतना ही जरूरी है। जैसे वह कौन सी कहानी पढ़ना चाहता है, किस खेल में रुचि रखता है, कौन सा रंग पसंद करता है, अपना सामान कैसे संभालना है, ये छोटी बातें सच्चे में बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जब बच्चा महसूस करता है कि माता पिता मुझे समझते हैं, तो वह उनसे और ज़्यादा जुड़ता है। बच्चे को अपने सपनों के हिसाब से ढालने की जगह उसकी अपनी खूबियों को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चा अलग होता है और यही उसकी खूबसूरती है।

बच्चा जब घर में आता है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके छोटे छोटे कदम सब घर में एक अलग सी रौनक भर देते हैं। बच्चा केवल परिवार का सदस्य नहीं होता, वह घर की धड़कन बन जाता है। लेकिन बच्चे को सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं है, उसे समय देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल की भागदौड़ में माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी चीज़ें, अच्छी सुविधाएं। लेकिन कई बार बच्चा बस इतना चाहता है कि मम्मी पापा थोड़ी देर उसके साथ बैठें, कभी उसकी ड्राइंग देखें, कभी उसकी स्कूल की बातें सुनें, कभी उसके साथ हंसें, कभी कोई कहानी सुनाएं। ये छोटी छोटी बातें बच्चे के मन में बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। रोज़ अगर 15-20 मिनट भी माता पिता पूरी तरह बच्चे के साथ रहें, बिना मोबाइल, बिना जल्दी के, तो बच्चा बहुत सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, और जब बच्चा खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक मित्रवत अभिभावक बच्चे के लिए ऐसा सेफ स्पेस बनाता है जहाँ बच्चा अपनी खुशी, डर, गलती और उलझन सब कह सके। यही इमोशनल कनेक्शन बच्चे के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अब आगे सुनते हैं बचपन की चंचलता, खेल और कल्पना की दुनिया में ले जाने वाला ये गीत।

ये गीत सुनते ही हमारा बचपन आंखों के सामने घूमने लगता है ना दोस्तों? खिलौने, खेल, कहानियाँ, दौड़ना, हंसना, सवाल पूछना, यही तो बचपन है। बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें हर बात लेक्चर से समझ नहीं आती, कई बातें अनुभव से समझ आती हैं। बच्चा गलती करेगा, चीज़ें गिराएगा, सवाल पूछेगा, कभी बात नहीं मानेगा, कभी बार बार वही चीज़ पूछेगा, यही उसकी लर्निंग प्रोसेस है। अगर हम हर गलती पर गुस्सा करेंगे तो बच्चा डरने लगेगा, लेकिन अगर हम कहें कोई बात नहीं, अब इसे सही तरीके से करते हैं, तो बच्चा सीखने के लिए तैयार रहता है। बच्चों का विकास सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, खेलना, दोस्तों से मिलना, परिवार से बात करना, अच्छी आदतें सीखना, शरीर से एक्टिव रहना, भावनाएं समझना, ये सब भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। मित्रवत अभिभावक बच्चे को अनुशासन भी सिखाते हैं, लेकिन प्यार से। वे नियम बनाते हैं, पर नियमों की वजह भी समझाते हैं। जब बच्चा समझता है कि ये बात मेरे भले के लिए कही जा रही है, तो वह ज़्यादा अच्छे से मानता है।

दोस्तों, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा पढ़ाई में तेज़ होता है, कोई ड्राइंग में, कोई म्यूज़िक में, कोई खेल में, कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई थोड़ा स्लो लर्नर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह कम है। कई बार हम अनजाने में बच्चों की तुलना कर देते हैं, देखो वह कितना अच्छा करता है, तुम क्यों नहीं कर पाते। ऐसी बातें बच्चे के मन को चोट पहुंचा सकती हैं। वह सोचने लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं। बच्चे को कंपैरिजन नहीं, एनकरेजमेंट चाहिए। जब माता पिता कहते हैं कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो बच्चा ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ता है। उसे ये भरोसा चाहिए कि गलती होने पर भी घर में उसे समझा जाएगा। हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है। किसी को सीखने में थोड़ा समय लगता है, किसी को समझाने का तरीका अलग चाहिए होता है। मित्रवत अभिभावक बच्चे की कमजोरी को देखकर उसे नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। बच्चे को दूसरों जैसा बनाने की जगह उसे उसका बेहतर वर्जन बनने में मदद करना ही सही पेरेंटिंग है। तो दोस्तों, वैश्विक अभिभावक दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को केवल निर्देश देने नहीं, उन्हें समझने और सुनने की ज़रूरत है। उनके भविष्य की चिंता के साथ साथ उनके आज को प्यार से संवारना भी जरूरी है। इसी संदेश के साथ आप सभी अभिभावकों को वैश्विक अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य, लेती हूं आपसे इजाजत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को यहीं संपन्न करने की। नमस्कार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोट कुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक

0: स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना। तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना। अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
0: जी।
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
0: जी।
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे? लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
0: जी।
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक

0: एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी,
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी,
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी,
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी।

0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का
1: इस्तेमाल
0: इस्तेमाल करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं।
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से। उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है,
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप
0: व्हील
1: होना
0: चेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह

0: की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIET की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी,
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी,
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी आपका बहुत

0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी केके की आवाज में। फिल्म का नाम था मुझे कुछ कहना है। समीर के बोल थे अनु मलिक की धुन। अगला गीत है फिल्म बचना ए हसीनों से केके और शिल्पा राव की आवाजें हैं। अन्विता दत्त गुप्तन की शब्द रचना है, विशाल शेखर की संगीत रचना।

केके की आवाज में ये गीत था फिल्म तुम मिले से, प्रीतम की धुन पर बोल थे सईद कादरी के। अगला गीत है फिल्म द ट्रेन से, केके और जुबीन की आवाजें हैं। गीत सईद कादरी का है, संगीत मिथुन का।

0: केके को आपने सुना फिल्म मेट्रो में। प्रीतम की धुन पर बोल थे सईद कादरी के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओ, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित

0: रहवा, पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the

0: ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
1: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नजर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमनो अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस की और हुकूमत की तजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा तरीन आदाद और शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद और शुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबाबंदी, माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेश रफ्त की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुजश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खदमात की तोसी, समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर निफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अम्ल पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरियस्ता वजीर आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वो तूफान, बारिश, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अवलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, अब समय है हमारी बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार का।

बच्चों की धमाचौकड़ी मची रहती है, ये हम सभी जानते हैं। बच्चा क्या खा रहा है, कितना समय मोबाइल देख रहा है, कितने समय खेल रहा है, इन सभी चीजों की निगरानी रखना माता पिता का ही काम है। बहनों, सजग अभिभावक वो होते हैं जो बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी भावनाओं, उनकी गतिविधियों यानी वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर निगाह रखते हैं। ये कभी ना सोचें कि हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। कुछ माता पिता की आपने ये आदत देखी होगी बहनों कि वो अक्सर ये कह देते हैं कि यदि उनको कोई शिकायत करता भी है कि आपके बच्चे ने ये किया, तो वो तुरंत मना कर देते हैं, भाई हमारा बच्चा तो ये काम कर नहीं सकता। बहनों, बच्चों की कमी यदि कोई बता रहा है तो उसे सुनना चाहिए ध्यान से और कोशिश करनी चाहिए कि उस ओर ध्यान दिया जाए। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें संतुलित भोजन भी देना चाहिए। आजकल के बच्चे घर का खाना खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ना तो उनके शरीर में दौड़ने भागने की हिम्मत होती है और ना ही बहुत देर तक काम करने की शक्ति होती है। आजकल बच्चों के अंदर वो एनर्जी नहीं होती जो कि पहले समय में हुआ करती थी। भाई यदि हम अपनी ही बात करें तो हम लोग बहुत काम कर लिया करते थे। तो बहनों, ये माता पिता का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को जंक फूड से थोड़ा दूर रखें। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप कभी दें ही ना, लेकिन कोशिश करिए कि घर का खाना ज़्यादा दिया जाए। आज के युग में माँ का ये भी फ़र्ज है कि बच्चा मोबाइल का प्रयोग कितनी देर कर रहा है और साथ ही साथ वह मोबाइल पर क्या देख रहा है, इसकी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। उनके मोबाइल के इस्तेमाल और इंटरनेट के उपयोग पर उचित निगरानी रखें। उन्हें साइबर सुरक्षा के नियमों की जानकारी भी देनी चाहिए। उनके मित्र बनकर उनके साथ रहना चाहिए। उनकी बातों, उनकी समस्याओं को सुनना और समझना चाहिए। यदि आप मित्र बनकर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी समस्याएं आपसे शेयर करेंगे। समय समय पर उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, इसकी जानकारी उन्हें देते रहने चाहिए। जब बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात करते हैं तो वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। बहनों, बच्चों को कुछ

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, जिस तरह से आजकल हमें मौसम में परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसका मुख्य कारण हमारा प्रकृति के प्रति उदासीन व्यवहार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति से विशेष लगाव होता है। उन्हीं में से एक नाम है सालूमरदा धिम्मका, जिन्हें बनियन ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है। बहनों, इनका प्रकृति से विशेष लगाव था। इनके संतान न होने के कारण इन्होंने क्या किया कि पेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने सड़क के किनारे सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए, और सिर्फ उन पेड़ों को लगाया ही नहीं बल्कि वर्षों तक उनकी देखभाल भी की। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पेड़ लगा तो देते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाते। बहनों, कन्नड़ भाषा में सालूमरदा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। धिम्मका ने अपने अथक प्रयासों से 300 से अधिक बरगद के पेड़ लगाए, जो आज विशाल वृक्ष बनकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। मैंने उनका ये योगदान हमें बताता है कि एक व्यक्ति भी समाज

और प्रकृति के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पर्यावरण संरक्षण में उनके इस योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। सच प्रकृति की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, इसलिए हमें हर पल प्रकृति के सम्मुख रहना चाहिए, प्रकृति को सहेजना चाहिए और यही हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। तो बहनों, ये तो हमने आपसे की कुछ बातें और अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, गृह वाटिका एवं बागवानी के लाभ और

0: देती है। इसलिए हमें हर पल प्रकृति के सम्मुख रहना चाहिए, प्रकृति को सहेजना चाहिए और यही हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। तो बहनों, ये तो हमने आपसे की कुछ बातें और अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, गृह वाटिका एवं बागवानी के लाभ, और वार्ताकार हैं शारदा सिंह।
1: हरियाली के साथ सेहत, सुकून और बचत का खूबसूरत रास्ता बदलती जीवन शैली में बड़ा है बागवानी का महत्व। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ते प्रदूषण और तनाव भरे माहौल के बीच लोग अब फिर से प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। यही कारण है कि घर में बागवानी यानी होम गार्डनिंग तेजी से लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है। कभी केवल गांवों और बड़े घरों के बगीचों तक सीमित रहने वाली बागवानी अब शहरों के फ्लैट, छोटी बालकनी और छतों तक पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि आप बहुत छोटी जगह से अगर जाएंगे तो आपको लोगों के कनस्तरों में, डब्बों में, छोटी छोटी शीशियों में भी लोग आजकल बागवानी करना शुरू कर चुके हैं। लोग अपने घरों में फूल, फल, सब्जियां और औषधीय पौधे उगाकर न केवल घर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं बल्कि मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य भी पा रहे हैं। घर में हरियाली केवल देखने में अच्छी नहीं लगती बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत बनती है। सुबह उठते ही पौधों के साथ बिताया गया कुछ समय पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पौधों के साथ समय बिताने से तनाव और चिंता कम होती है। आज जब लोगों का अधिकांश समय मोबाइल, कंप्यूटर और एसी में बंद कमरों के बीच गुजरता है, तब पौधों के बीच रहना मानसिक राहत देता है। कई शोधों से यह साबित हुआ है कि हरियाली के संपर्क में रहने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक शांत, स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करते हैं। यही वजह है कि अब डॉक्टर भी लोगों को प्रकृति से जुड़ने, पौधे लगाने, बागवानी करने की सलाह देते हैं। घर में तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे पौधों से न केवल वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं। और आप जानते हैं, स्नेक प्लांट तो ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए लोग इसको बहुत स्थान अपने घर में देने लगे हैं, जिससे घर का वातावरण ताजा और स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है। घर में बागवानी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोग अपनी जरूरत की ताजी कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, जैविक सब्जियां उगा सकते हैं। बाजार में मिलने वाली सब्जियां तो आप जानते हैं कि अक्सर रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से उगाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आगे चलकर नुकसानदायक ही होती हैं। ऐसे में घर की छत या बालकनी में उगाए गए टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक, मेथी, पुदीना और साथ में छोटी बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, तुरई भी आप उगा सकते हैं, और ऐसी पौष्टिक और जैविक सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आजकल शहरों में किचन गार्डन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग छोटी जगह में भी गमलों में, ग्रो बैग में, पुराने डब्बों का उपयोग करके बागवानी करते हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, जिससे आपको ताजी सब्जियां मिलती हैं, सुंदर फूल मिलते हैं, अच्छी खुशबू और चिड़िया, तितलियां आदि भी आपके घर में बहुत आती हैं। घर में बागवानी शुरू करने के लिए बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं होती है। यदि आपने ठान लिया है तो घर की बालकनी में, छत या धूप आने वाली जगह, छोटी सी खिड़की भी अगर आपके पास है तो आप उसके पास छोटे छोटे पौधे रख के उगा सकते हैं। शुरुआत में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनकी ज्यादा देखभाल न करनी पड़े। तुलसी, गुलाब, गेंदा, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे कम देखभाल में भी अच्छे से बढ़ते हैं। पौधों के लिए मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद, जैविक खाद और थोड़ी रेत मिलाना लाभकारी होता है, क्योंकि इससे मिट्टी पोरस हो जाती है और आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। मिट्टी उपजाऊ बनती है, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं इन सब कामों को करने से। आजकल लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए घर में भी बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण और कटते पेड़ों के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में घरों में लगाए गए पौधे वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक पौधे लगाने से वातावरण में नमी बनी रहती है और गर्मी का प्रभाव भी काफी हद तक कम हो जाता है। यदि आप अपने घर के बाहर 2 पेड़ लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण गर्मी से कितना बचाता है आपको। आपको कम एसी चलाने की जरूरत होगी और उसके अलावा आपके यहाँ बहुत सारे चिड़िया, तितलियां, ये सब भी आएंगी। इसके अलावा घर की रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे का उपयोग भी आप खाद बनाने में कर सकते हैं, जिससे कि आप बाहर कचरा कम फेंकेंगे। फल और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती

0: और सूखे पत्तों से तैयार की गई कंपोस्ट खाद पौधों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इससे कचरा भी कम होता है और आपके घर का सारा कूड़ा खाद बनाने में चला जाता है और पौधों को प्राकृतिक पोषण मिलता है। बागवानी बच्चों के लिए भी बेहद उपयोगी गतिविधि मानी जाती है। इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है, उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। जब बच्चे अपने हाथों से बीज बोते हैं, पौधे लगाते हैं और उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं, तो उन्हें पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ में आता है। यही कारण है अब कई स्कूलों में भी बच्चों को पौधारोपण और किचन गार्डनिंग में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बागवानी केवल शौक नहीं, बल्कि यह एक तरह की थेरेपी है। मिट्टी में काम करना, पौधों को पानी देना और नई पत्तियों को उगते देखना मन को सुकून देता है। यही वजह है कि आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग बागवानी को मानसिक शांति और खुशी का माध्यम मानने लगे हैं। सुबह शाम पौधों के बीच बैठना, उसकी देखभाल करना लोगों को प्रकृति के करीब लाता है। कुल मिलाकर घर में बागवानी आज के समय की एक सकारात्मक और जरूरी पहल बन चुकी है। घर को स्वस्थ और सुंदर और हरा भरा बनाती है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानसिक सुकून के लिए भी बेहद लाभकारी है। थोड़ी सी मेहनत, सही जानकारी और नियमित देखभाल के साथ कोई भी व्यक्ति अपने घर के छोटे से कोने को हरियाली से भर सकता है। ऐसे समय में जब लोग तनाव और प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तब घर की ये छोटी सी बगिया सुकून, ताजगी और बेहतर जीवन का सबसे आसान रास्ता बनती जा रही है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थीं शारदा सिंह से वार्ता, गृह वाटिका एवं बागवानी के लाभ। बहनों, आजकल तो छुट्टियां हैं और छुट्टियां चल रही हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत बागवानी घर पर की जा सकती है। और साथ ही साथ बच्चों की भी आजकल छुट्टियां हैं, तो बच्चों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। वैसे जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों की रोज नई नई फरमाइशें भी चालू रहती हैं। मम्मियों का आधा समय तो ये सोचने में बीत जाता है कि भाई बच्चे की छुट्टी है तो आखिर नाश्ता बनाया क्या जाए, क्योंकि जिस भी चीज़ का नाम लीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने ये कल ही खाया था, मुझे ये आज नहीं खाना। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय इस बात को सोचने में बीत जाता है कि भाई बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। तो बहनों, आज हम आपको बताते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की विधि। अब इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी सूजी मलाई में फेंट लें और थोड़ी देर के लिए उसे सूजी को फूलने के लिए रख दें। उसके बाद उसमें कटी हुई प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें। एक ब्रेड लेकर उस पर पिज़्ज़ा बेस लगाकर एक पतली लेयर इस पेस्ट की फैला दें और उस पर से उस पे चीज़ भी लगा दें और चिली फ्लेक्स डाल दें, ऑरिगेनो वगैरह डाल दें टेस्ट के लिए। और उसके बाद तवे पर धीमी आंच पर बटर से उसको दोनों तरफ से सेक लें। देखिए, आपका बच्चा बहुत ही स्वाद से खाएगा और मुझे लगता है कि यदि बच्चों ने ये बात सुन ली होगी तो वो आज ही अपनी मम्मी से खाने की फरमाइश इसे ज़रूर करेंगे। बहनों, हम आपसे आरंभ में बात कर रहे थे पेड़ों के संरक्षण की। यदि प्रकृति को हमने समय रहते नहीं संभाला तो दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देंगे। एक समय तो ऐसा हुआ करता था जब लोग घर का पता किसी को इस बात से बताते थे कि उस पेड़ के नीचे उसका घर है, कुछ इस तरह।

0: मैनू आज हमारे साथ हैं गरिमा जी। गरिमा जी, मैं देख रही हूँ कि आपका स्टाइल बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, क्या बात है, आपने तो बालों को बड़े अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, कुछ डिफरेंट लुक लग रहा है, क्या है ये?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। और इस स्टाइल को ना हम कहते हैं फ्रेंच बन।
0: अच्छा, हाँ तभी मुझे आज कुछ डिफरेंट लग रही है आप, क्या होता है भाई
1: ये स्टाइल बहुत ही आकर्षक लगता है एक्चुअली। इसमें बालों को पीछे मुड़कर बन बनाया जाता है जिससे
0: अच्छा।
1: हमारे व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण आ जाता है।
0: अच्छा, तो फिर जैसे कोई घर में शादी हो या ऑफिस वगैरह में कोई पार्टी वगैरह हो, है ना, या घर में भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, तो ये इस तरीके का यदि बन बना लिया जाए तो फिर तो लेडीज एक अलग ही निखार आएगा उनमें
1: जी। हाँ, फ्रेंच बन की तो विशेषता ही यही है
0: हाँ
1: कि
0: जी।
1: इसमें आपके चेहरे की बनावट निखर के आती है
0: अच्छा,
1: और ये आपको एक क्लासिक लुक देता है। साड़ी पर तो ये और भी अच्छा लगता है।
0: तभी मुझे क्लासिक लुक लग रहा था आपका, इसीलिए मैंने टोक दिया आपको।
1: और आजकल तो इसको और भी खूबसूरत बनाया जाने लगा है, कभी मोती लगा के तो कभी अलग अलग सजावटी हेयर पिंस के साथ।
0: अच्छा, हाँ तो मतलब बालों को खूबसूरत बनाने के लिए मोती वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ना, तो ये खूबसूरती में आपकी चार चांद लगा देता है ना।
1: जी
0: और गरिमा जी, सच पूछा जाए तो भाई देखिए आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में तो आपको बहुत ही आराम मिल रहा
1: ऐसे
0: होगा
1: में तो साड़ी के साथ और भी आराम मिलता है।
0: आराम मिल रहा होगा, सारे बाल पीछे, फिर तो आराम ही मिल रहा होगा। तो भाई आपके इतने प्यारे बालों को देखकर एक गाना तो बनता है।

मैनो घर संसार कार्यक्रम में कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अपनी सखी ललित वत्स को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में कुछ भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इस भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020

0: इसमें योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर

0: लेबनान पर इजराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत

0: बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति है उस्ताद अली अहमद हुसैन खान का पूर्वी धुन में शहनाई वादन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन खान का पूर्वी धुन में शहनाई वादन। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित भोलानाथ का भटियाली धुन में बांसुरी वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भोलानाथ का राग मिश्र पीलू में बांसुरी वादन। इसी के साथ कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है।

0: ये गीत था गीता दत्त की आवाज में फिल्म आर पार से। ओपी नैयर की धुन पर बोल थे बजरूह सुल्तानपुरी के। अगला गीत है फिल्म गंगा जमुना से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है शकील बदायूनी के और संगीत रचना नौशाद की है।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

आशा भोसले और महेंद्र कपूर को आपने सुना फिल्म आदमी और इंसान में, धुन रवि की थी। इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, श्रोताओं अब समय है कार्यक्रम गीत गुंजन का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म सुहाग से। चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर थे, समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद की धुन। अगला गीत है फिल्म नाजायज से अलका याग्निक की आवाज में। राहत इंदौरी की शब्द रचना है, अनु मलिक की संगीत रचना।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम की गुंजन को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म कुछ कुछ होता है में। गीत समीर का है, संगीत जतन ललित का।

कुमार सानू और अलका याग्निक को आपने सुना फिल्म परदेस में। नदीम श्रवण की धुन पर बोल थे आनंद बख्शी के। इसी के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1 करोड़ 21 लाख बुकिंग्स रिसीव

0: हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा श्वेत क्रांति पर। साथ ही आप सुनेगा वार्ता परिवार मनुष्य की प्रथम पाठशाला, वार्ताकार होंगी तिशा अरोड़ा। और चलते चलते में आप सुनेंगे गर्मी में त्वचा का रख रखाव।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, जिसमें चर्चा का विषय होगा जल है तो कल है। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमर सिंह गुर्जर की वार्ता, वर्षा जल का संचयन, लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। सांझ 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे विश्व दुग्ध दिवस और अभिभावक हमारे मार्गदर्शक।

आप सुनेगा वार्ता जीवन का आधार है माता पिता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुनीता रानी। शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्मों से गजलों का कार्यक्रम शाम गजल का। और 8:30 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनिएगा जनगणना विषय पर विशेष परिचर्चा।

9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक और 10 बजे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आनंद लीजिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का। प्रस्तुत करता हूं अनिंद्र सिंह और संपादक होगा विशेषता शर्मा का। रैन 10:30 पर आकाशवाणी आगरा से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवशीष चक्रवर्ती से राग जोग में गिटार वादन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हर दिन जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है और जब उस दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर की वंदना से हो जाए तो मन, तन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। आज सोमवार है, शिवजी को समर्पित दिन, शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक। इसी पावन भाव के साथ आकाशवाणी आगरा से हम शुरू कर रहे हैं आपका प्रिय भक्ति कार्यक्रम सुर संध्या।

0: पंडित नरेंद्र शर्मा की लिखी हुई भक्ति रचना को आप सुन रहे थे, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज थी लता मंगेशकर एवं साथियों की, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

शिव जी का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। शिव जी की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ से भक्ति रचना। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार और आवाज थी अमित त्रिवेदी की।

शिव जी के चरणों में जब मन लग जाता है तो जीवन की हर कठिनाई सहज हो जाती है। शिव जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आप सुन रहे थे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से गीत सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज में, जिसको लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रकीर्णा। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर होंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है, कहीं हल्की धूप है, कहीं बादलों की आवाजाही, तो कहीं गर्मी से राहत की उम्मीद। कल ओले भी पड़ गए दोस्तों और तुरंत बाद धूप भी निकल गई। बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल मौसम है, लेकिन गर्मी कहीं ना कहीं बरकरार है। ऐसे मौसम में एक ग्लास ठंडी छाछ या दही से बनी लस्सी मिल जाए तो कितनी राहत मिलती है ना? वहीं बच्चों को चॉकलेट शेक, मैंगो शेक, कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको ये सब पिला तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, गाने ज़रूर सुनवा सकती हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल बनता है, तो बताइए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आप पता लगाइए, साथ ही आनंद लीजिए इस गाने का।

0: टू चाहिए। बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गाना जितनी शिद्दत से लिखा होगा ना, उतनी ही शिद्दत से कुछ लोग कहते हैं दही चाहिए, दूध चाहिए। सुबह हो, शाम हो या रात, कुछ घरों में दूध पीना एक रिचुअल जैसा होता है और परिवार में जिस भी चीज़ का चलन चलता है वो सब हमारी आदतों में भी दिखने लगता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, सही गलत का फ़र्क नहीं समझता, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है और उसकी इस सीख की शुरुआत किसी स्कूल से नहीं बल्कि उसके परिवार से होती है। साथियों, आज हम विश्व अभिभावक दिवस मना रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर अभिभावक कौन होते हैं? अभिभावक केवल माता पिता ही नहीं बल्कि वे सभी लोग होते हैं जो किसी बच्चे के पालन पोषण, सुरक्षा, मार्गदर्शन और संस्कारों की जिम्मेदारी निभाते हैं, और यही अभिभावक हमारी पहली पाठशाला बनते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं वार्ताकार तिशा अरोड़ा से।
1: परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान देता है, जीवन में हर मुसीबत का समाधान देता है, प्यास में गंगा और यमुना की धार बन जाता है, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार भी बन जाता है। आज हम उस स्कूल की बात करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हम शायद कभी देख नहीं पाते, जिसे हम शायद कभी जान नहीं पाते, जिससे हमारा विकास होता है, हमारा परिवार। परिवार मनुष्य की वो प्रथम पाठशाला है जो उसके अच्छे व्यक्तित्व की समझ देता है, क्योंकि परिवार में बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, वही सीखते हैं। जैसे छोटे बड़े की पहचान करना, अपने परायों को पहचानना, अपने भाई बहनों के साथ मिल बांट कर खाना और फिर उसी खुशी का एहसास करना, ये छोटी छोटी चीजें हमें कोई सिखा ही नहीं सकता, ये हमें सिर्फ हमारा परिवार ही सिखा सकता है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान कराती है, अनेक रिश्तों से उसका मेल करा देती है, बच्चा कैसे रहे, कैसे बोले, किससे कैसे बात करे, इसकी शिक्षा बच्चे को परिवार से ही मिलती है। ये बच्चों की जो नींव

0: है ना जो उन्हें संस्कारों की समझ देता है। माता पिता उसे ऐसा योग्य बनाते हैं कि वह स्वयं सत्य की खोज में निकलता है, क्योंकि जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एक एहसास ही काफी है। इस आधुनिक समाज में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो परिवार की भूमिका ही नहीं समझते, उन्हें अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है, जबकि सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहां पर बालक मैं और तुम में अंतर करना सीखता है। जब परिवार में सभी सदस्य प्यार से बोलते हैं तो बड़ा होकर वही मनुष्य समाज में प्रेम का पाठ पढ़ाता है। हमारे माता पिता स्वयं न खाकर हमें खिलाते हैं, खुद कष्ट उठाकर हमारे सपनों को आराम देते हैं, तो इससे हमें त्याग का महत्व पता चलता है, क्योंकि दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, लक्ष्य का रास्ता दिखलाए हमें बापू की फटकार, और माँ की ममता दिखलाती बच्चों को पूरा संसार। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है वे देखता है कि माँ गृहस्थी का कार्य करती है, पिता धन अर्जित करता है और भाई बहन काम में हाथ बटाते हैं, तो एक दूसरे को कैसे सहयोग करें वो सब समझता है, वो सब सीखता है। अपने बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो मनुष्य में अनुशासन की भावना आ जाती है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि आहार तो है सबसे अनमोल, आहार तो है सबसे अनमोल, लेकिन खाली पेट तुरंत भर जाता है जब बोलता है कोई प्रेम के मीठे बोल। एक मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति का विकास परिवार से ही शुरू होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, खूब परिश्रम करके समाज को आगे ले जाना, अपनी समझदारी और अपने संस्कारों से किसी का भी दिल चुटकियों में जीत लेना, दूसरों के दुखों को समझना, अपनेपन का एहसास होना, ये शिक्षा हमें और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमें सिर्फ हमारा परिवार ही दे सकता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन की हर राह में परिवार ही एक ऐसी एक मात्र पाठशाला है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, हमें हर कदम पर हमारे साथ रहती है, हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देती है। तो फिर आज खुशियों के सारे पत्ते निकले, खुशियों के सारे पत्ते निकले, दुख ना हो जिसमें हार का, सुख दुख चाहे कितने आए साथ हो अपने परिवार का, नई दिशाएं जो हमें दिखाएं, नई दिशाएं जो हमें दिखाएं, स्वागत करे हमारे सपनों के संसार का, अंधकार को हटाकर फूल बने जो उजियार का, तो जलते थारों के बीच में आओ आज हम सब मिलकर लगाएं पौधा एक कुछ अपनों के प्यार का।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता परिवार मनुष्य की प्रथम पाठशाला, वार्ताकार तिशा अरोड़ा से, जहां हमने जाना कि हमारा परिवार, हमारे अभिभावक ही हमारे जीवन की नींव रखते हैं, उनकी सीख, उनका त्याग और उनका स्नेह ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। इतिहास में ऐसे कई परिवार हुए जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया और अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता का उदाहरण दिया, कला के क्षेत्र में भी पहचान बनाई और अपनी एडवांस्ड पॉलिसी से एक अमिट छाप छोड़ी। हम आज भी हिस्ट्री की किताबों में इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही वंश के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के सवाल का जवाब। दोस्तों, आज 1 जून है और आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें दूध के महत्व और उससे जुड़े लाखों लोगों के योगदान को याद करने का अवसर देता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दूध एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, बच्चों की ग्रोथ से लेकर बुजुर्गों की ताकत तक

0: दूध हर उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब भारत में दूध की भारी कमी थी। आज जिस तरह हम ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए याद करते हैं, उसी तरह दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसे हम वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के आनंद शहर से हुई थी, आज जिसे हम भारत का दुग्ध नगर भी कहते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य था किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाना। इस क्रांति के पीछे सबसे महत्वपूर्ण नाम है वर्गीज कुरियन। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और यही आज के सवाल का जवाब भी है। दोस्तों, उनके ही नेतृत्व में अमूल कोऑपरेटिव मॉडल ने किसानों को सीधे डेयरी उद्योग से जोड़ा और एक नई आर्थिक शक्ति प्रदान की। साल 1970 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम शुरू किया, जो दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। इसका लक्ष्य था गांवों के दूध उत्पादकों को शहरों के उपभोक्ताओं से जोड़ना और एक मजबूत मिल्क नेटवर्क तैयार करना। धीरे धीरे इस प्रयास ने चमत्कारी परिणाम दिए। भारत, जो कभी दूध की कमी से जूझता था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया रास्ता भी मिला। लेकिन दोस्तों, जहां एक समय दूध पर भरोसा था, आज अडल्ट्रेशन की खबरें हमारे सामने हैं। आज दूध में पानी, केमिकल, आर्टिफिशियल कलर्स और कभी कभी पेस्टिसाइड्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी मिल रहे हैं। कई मामलों में पशुओं को एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, जिससे दूध की क्वालिटी कम हो रही है। आज के समय में ये बेहद ज़रूरी है कि हम जागरूक बने, अपने दूध के स्रोतों को पहचानें, चाहे वो लोकल मिल्कमैन हो या पैकेटेड ब्रांड, ताकि हमें सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी वाला दूध मिल सके। तो दोस्तों, ये हमने जाना श्वेत क्रांति के बारे में। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम जानेंगे काकतीय वंश के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों। जब हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो अक्सर उत्तर भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों का उल्लेख होता है। लेकिन दक्षिण भारत में भी कई ऐसे शक्तिशाली राजवंश हुए, जिन्होंने अपने समय में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। उन्हीं में से एक था काकतीय वंश। दोस्तों, काकतीय वंश का उदय लगभग 12वीं शताब्दी में वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र में हुआ, जिसकी राजधानी वारंगल थी। ये राजवंश पहले पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, अगर काकतीय वंश की सफलता का श्रेय किसी को जाता है, तो उनमें प्रमुख नाम है गणपति देव का। लेकिन इस वंश की सबसे दिलचस्प बात यह है उनकी महिला शासक रुद्रमा देवी। आज जब हम वुमन लीडरशिप और वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तब ये जानकर आश्चर्य होता है कि 13वीं शताब्दी में ही रुद्रमा देवी एक शक्तिशाली शासक के रूप में शासन कर रही थी। उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और राज्य को मजबूती प्रदान की। साथियों, किसी भी साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं मापी जाती, असली ताकत होती है उसके लोगों की खुशहाली और संसाधनों की बेहतर प्रबंधन में। काकतीय शासकों ने जिस क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय काम किया, वो था वाटर मैनेजमेंट। आज हम वाटर क्राइसिस और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जैसी समस्याओं की चर्चा करते हैं, लेकिन काकतीय शासकों ने

सदियों पहले ही वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर तालाब, झीलें और जलाशय बनवाए थे। उन्होंने एक तरह का टैंक इरिगेशन सिस्टम विकसित किया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता था। यही कारण था कि कृषि उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और अगर कला और स्थापत्य की बात करें तो काकतीय वंश का योगदान यहाँ भी कम नहीं था। काकतीय काल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रामप्पा मंदिर। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना अनोखा है कि आज भी इंजीनियर और इतिहासकार इसकी तकनीकों का अध्ययन करते हैं। यही वजह है कि रामप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ परिस्थितियां बदली। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत से होने वाले आक्रमणों ने काकतीय साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंततः 1323 ईस्वी में ये साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन किसी भी राजवंश की पहचान केवल उसके अस्तित्व की अवधि से नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत से होती है। काकतीय वंश हमें सिखाता है कि एक सफल शासन केवल युद्ध जीतने से नहीं बनता, उसके लिए मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर वाटर मैनेजमेंट, प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण जरूरी होता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी काकतीय वंश को दक्षिण भारत के सबसे दूरदर्शी और प्रगतिशील राजवंशों में गिना जाता है। काकतीय वंश की अधिकांश प्रमुख धरोहरें आज के वारंगल, हनमकोंडा, मुलुगु बेल्ट में केंद्रित हैं। इसलिए इतिहासकार अक्सर वारंगल को सिटी ऑफ काकतियाज भी कहते हैं। तो अगर आप काकतीय विरासत को करीब से देखना चाहते हैं तो अगली बार वारंगल का टूर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह आत्मनिर्भर बनने का सपना इतिहास के राजवंशों का था, आज उसी तरह हम भारतवासियों का भी है। जिस तरह वो उसके लिए नीति निर्माण करते थे, आज हमारी सरकारें भी करती हैं। और आज हम ऐसी ही एक पहल के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लाई गई है। दोस्तों, इस योजना का नाम है भव्य, यानी भारत औद्योगिक विकास योजना। जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसे जमीन, सड़क, बिजली, पानी, अनुमति और कई सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार इन्हीं कारणों से उद्योग शुरू होने में महीनों या सालों तक का समय लग जाता है। अब इसी चुनौती का समाधान लेकर आई है भव्य स्कीम। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित किए जाएंगे। अब आप सोचेंगे, ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क आखिर होते क्या हैं? मान लीजिए आप नया मोबाइल खरीदते हैं, उसे चालू करने के लिए आपको उसके अंदर सर्किट, बैटरी या स्क्रीन नहीं लगानी पड़ती है ना, बस प्लग कीजिए और प्ले कीजिए। इसी तरह प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगों के लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं पहले से ही तैयार होंगी, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेयरहाउस, टेस्टिंग लैब और प्रशासनिक सुविधाएं। यानी उद्योगों को शुरुआत से सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। यानी भव्य का उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भव्य स्कीम तो उद्योगों और फैक्ट्रियों की बात कर रही है, लेकिन इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में नए उद्योग लगते हैं तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ही रोजगार नहीं बनते, उसके आसपास परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, मरम्मत सेवाएं, गोदाम, पैकेजिंग और कई छोटे व्यवसाय भी विकसित होते हैं। युवाओं को अपने शहर या जिले के पास ही रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे बड़े शहरों की ओर पलायन कम होता है। साथ ही बेहतर सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलता है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए बाजार मिल सकते हैं और स्थानीय उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो भव्य स्कीम का उद्देश्य सिर्फ उद्योग बढ़ाना नहीं, बल्कि उद्योगों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। क्योंकि जब उद्योग बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो आम लोगों की आय और जीवन स्तर दोनों बेहतर होते हैं। तो दोस्तों,

जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं उनकी तारीफ तो बनती है, लेकिन इन स्कीम्स को सफल बनाने के लिए कई लोगों की मिली जुली मेहनत भी लगती है। और अब दोस्तों वक्त है आपके एंटरटेनमेंट का, रुक करते हैं संगीत की दुनिया की ओर और सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, आप भी खुद को आईने में देखकर ऐसे ही गुनगुनाते होंगे, है ना? लेकिन ये भीषण गर्मी आपके चेहरे की चमक फीकी कर सकती है, इसलिए इस मौसम में ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा का खास ख्याल रखें। बाहर निकलने पर सनस्क्रीन लगाएं, खूब पानी

पिए और शरीर को साफ और सूखा रखें जिससे इन्फेक्शंस का खतरा ना रहे। मौसमी फल खाएं और अपना ध्यान रखें। दोस्तों अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी अपनी रेडियो दोस्त प्रकीर्णा के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, प्रोग्राम प्रेजेंटर थी प्रकीना। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1500
1: 30 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम ग्राम्य लोक का।

राम राम श्रोता साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक कार्यक्रम ग्रामलोक में और मैं हूं आपकी बहन सोमा जैन। आज से जून का महीना लग गया है, यानी गर्मी का असर अभी और देखना है। ऐसे में गर्मी से अपना बचाव करें, साथ ही लू से भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लू एक बार लग जाए तो बहुत परेशान करती है। तो भाई अपना बचाव करिए। वैसे आजकल तेज रफ्तार से आंधी तूफान भी आ रहे हैं, ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखें। सच तो ये है कि प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी, हमें बस जागरूक होकर अपना ध्यान रखना होगा, न सिर्फ अपना बल्कि अपनी इस प्रकृति, अपनी धरती माँ को भी सुरक्षित रखना हमारा काम है। ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से हमें बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मनुष्य ने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग किया, और उन्हीं में से एक है जल, यानी पानी। पानी केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। जिस दिन धरती पर पानी समाप्त हो जाएगा, उस दिन जीवन की कल्पना भी संभव नहीं होगी। हम सब तो किसान परिवारों से आते हैं, हम जानते हैं कि खेत में फसल तभी लहराती है जब समय पर फसलों को पानी मिले। यदि किसी साल वर्षा कम हो जाए या भूजल स्तर नीचे चला जाए, तो सबसे पहले हम किसानों को ही मुश्किल पैदा होती है, हम ही इसी से प्रभावित होते हैं सबसे पहले। पानी हमारी खेती, पशुपालन और जीवन से जुड़ा हुआ है। आज विश्व में पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नदियां सिकुड़ रही हैं, तालाब सूख रहे हैं और भूजल लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। हमारे खुद के देश में आज भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी को लेने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। और कड़वा सच ये है कि ये समस्या अब बढ़ती ही जा रही है। बिन पानी सब सूख। और बात अगर हम किसानों की हो, तो हमें तो गेहूं के लिए पानी चाहिए, धान के लिए पानी चाहिए, सब्जियों के लिए पानी चाहिए, बागवानी के लिए पानी चाहिए। यदि पानी सरलता से उपलब्ध नहीं होगा, तो खेती की लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा। इसलिए आज की आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण को अपनी खेती का हिस्सा बनाएं। जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें हम आसानी से अपना सकते हैं और पानी को बचाने में अपना खुद का योगदान दे सकते हैं। यदि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पानी भी संरक्षित करेगा, तो निश्चित मानो किसान साथी

0: बड़ा बदलाव आएगा। हम किसान साथी खेत तालाब बना सकते हैं, जो तालाब और कुएं हैं जो सूख गए हैं हम उन्हें बचा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई अपनाना, स्प्रिंकलर सिंचाई, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकना, ये सब वो काम हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और पानी के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वर्षा जल संरक्षण। प्रकृति बारिश के रूप में हमें अमृत रूपी पानी देती है जिसे हम यूं ही बर्बाद होने देते हैं। आज की ज़रूरत ये है कि हम वर्षा के जल का संचयन करें। देखो, आने वाले दिनों में बारिश का मौसम है, ऐसे में बारिश के पानी को बर्बादी से बचाने के लिए, उसका संचयन करने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तो चलो आज इसी बात को समझते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसके लिए सुनते हैं अमर सिंह गुर्जर की वार्ता जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं वर्षा जल संचयन पर।
1: परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि के सृजन के साथ साथ ही इस जगत में जल और जीव दोनों के अटूट रिश्ते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों आदि में इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के नाना तरह से वर्णन मिलते हैं, और जल के बिना जीव मात्र एक कूड़ी कल्पना है, अर्थात जल ही जीवन है। और हमारे पूर्वजों एवं महान कवियों ने लिखा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जब हम इतिहास के झरोखों से झांक कर देखें तो पाते हैं कि संसार में जितनी भी सभ्यताएं पनपी थीं, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही उनके अबुद्ध स्थल रहे हैं। नील नदी, दजला फरात, सिंध एवं गंगा नदी की सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इससे ही हमारा संसारी जीवन पुष्पित एवं पल्लवित होता है, और इसका अभाव ही सर्वनाश का सूचक है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राजा महाराजाओं ने पानी की महती आवश्यकता को समझकर जल संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए तथा बांधों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि के द्वारा अपनी रियासतकालीन जनता की जलापूर्ति के लिए विशेष प्रबंध किए। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ प्रकृति ने भी करवट लेना शुरू कर दिया। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। जमीन का जल स्तर दिनों दिन नीचे खिसकता जा रहा है। यह बड़ा ही शोचनीय बिंदु है। जिस देश की 80% जनता का भाग मानसून पर निर्भर करता हो, उसके लिए वर्षा की अनिश्चितता एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती है। आज हमारे देश में कई जगह अकाल की विभीषिका देखने को मिलती है। यदि समय रहते हम लोगों ने समस्याओं के समाधान करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए तो हमारी मानवता को इसके बहुत गंभीर परिणाम भोगने होंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1950 में प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर थी, जो इस समय 1869 क्यूबिक मीटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय आजादी के समय उपलब्ध पानी का 40% से भी कम पानी उपलब्ध है। अगर जल संरक्षण की यही हालत रही और जनसंख्या वृद्धि की दर यही रही तो वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कुछ ज्यादा ही पानी उपलब्ध होगा, जो एक खतरनाक स्थिति है। जल संसाधन मंत्रालय का भी मानना है कि देश के 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बन चुकी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपनी पर्यावरण संबंधी द ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक नामक एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी तथा एशियाई व प्रशांत क्षेत्र के देशों में 65% लोग पेयजल की भारी कमी का सामना करेंगे। यह डरावना परिदृश्य हमारी ही पृथ्वी पर 30 साल बाद होगा। हमारे देश में भी आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी की ज्यादा जरूरत महसूस की जाने लगी। ट्यूबवेल खोदे जाने लगे, इसका दोहन इतना ज्यादा होने लगा कि कुएं तथा बावड़ियां सूखते चले गए। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार नलकूपों के अधाधुन खनन से भी जल संकट बढ़ा है। इस खनन के चलते ही गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में तो भूजल एकदम खत्म हो गया है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी जल स्तर तेजी से गिरा है, यह भी एक चेतावनी है। और इन सब में ज्यादा प्रभाव हमारे देश के मरु प्रदेश अथवा राजस्थान में देखने को मिलता है। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारे पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखना है। राजस्थान में सतही जल का 52

0: फुर्सत उपयोग हो रहा है। भूजल के लगातार दोहन के कारण 1994 में 12 क्षेत्र डार्क जोन में थे, जो बढ़कर 86 हो गए हैं। प्रदेश में अनेक सतही जल स्रोत सूखकर खेल के मैदान बन गए हैं। भूजल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5-10 वर्षों में जयपुर एवं प्रदेश भर में सन 2025 के बाद भूजल भंडार खत्म हो जाएंगे। राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों में भूजल नीचे जा चुका है। हमारे देश में 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर उपलब्ध पानी है, इसमें हमें 53 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी खेतों एवं पीने के लिए मिलता है, बाकी भाप बनकर उड़ जाता है या नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। हमारी 60% भूमि वर्षा के जल पर सिंचाई के लिए निर्भर है। इस वर्षा का आधा भाग व्यर्थ चला जाता है, अतः वर्षा जल का संचयन अब हमारी एक महती आवश्यकता है। इसके लिए हमें हमारी नदियों का जो जल समुद्र में जाता है उसे काम में लेना होगा। उदाहरण स्वरूप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की नदियों को जोड़कर उनका पानी राज्य को सुलभ कराया जाए तो मरुधरा पर मंगल हो सकते हैं। इन नदियों का पानी इस समय जो बाढ़ जैसी तबाही पैदा कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। हमारी जो नदियां पाकिस्तान को निकलती हैं उन पर बांध बनाए जाएं, जिससे एक एक बूंद पानी का उपयोग हो सके। साथ ही हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी। वर्षा के पानी को रोकने के लिए कैचमेंट एरिया में पानी रोककर तालाब बनाए जा सकते हैं। भूमिगत बंधारा, स्टॉप डैम, बोरी बंधारा, खेत तालाब जैसी परिस्थिति जन्य विकल्पों के जरिए पानी रोका जा सकता है। बाढ़ के पानी को भी विशाल झीलों, तालाबों, नालों और नदियों में संग्रहित करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हमें पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों की ओर भी ध्यान देना होगा तथा इसकी सफाई एवं पुनर्निर्माण करने होंगे, जिससे कि पुराने एवं पारंपरिक जल संग्रहण के तरीकों को ईजाद किया जा सके। हमें खेतों में मेड़बंदी करके बरसात के जल को रोकना होगा तथा सुविधानुसार एनीकट बनाए जा सकते हैं। वर्षा काल में 700 मिलीमीटर औसत वर्षा भी हो और उसका 70% पानी भी घर की 1000 वर्ग फीट छत से इकट्ठा किया जाए तो करीब 50,000 लीटर पानी कुएं में डालकर पुनर्भरण किया जा सकता है। हर वर्ष यदि 7300 हेक्टेयर क्षेत्र भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाए तो देश की पूरी आबादी को 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रतिदिन 30 लीटर पानी पालतू जानवरों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। अंततः हमें देश एवं प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाकर यही नारा देना चाहिए, खेत के जल को खेत में रोको, जल के गांव के जल को गांव में रोको और बूंद बूंद बचाओ, जल ही जीवन है, जिससे जनमानस में वर्षा के जल संचयन की प्रवृत्ति आए और हमारी भविष्य में आने वाली विकराल समस्या को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
1: तो किसान साथियों, अभी हमने अपने साथी अमर सिंह गुज्जर से जानकारी ली कि कैसे छोटे छोटे तरीके अपनाकर हम वर्षा का जल संचयन कर सकते हैं। आज मौसम अनिश्चित होता गया है, कभी अत्यधिक वर्षा होती है तो कभी सूखा पड़ता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जल संरक्षण पहले से अधिक आवश्यक होता जा रहा है। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे बच्चों को पानी मिलेगा, यदि हम आज तालाब बचाएंगे तो कल हमारी खेती बचेगी। साथियों, पानी की एक एक बूंद अमूल्य है। जब भी नल खुला छोड़ते हैं ना, तब पानी व्यर्थ बहता है। ऐसे में सोचना, याद रखना कि कहीं कोई हमारा अपना किसान साथी पानी की कमी से जूझ रहा है, फसलों के लिए पानी की मांग कर रहा है। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि पानी बचाएंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे, तालाबों और जल के स्रोतों की रक्षा करेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पशु सिर्फ हमारे मित्र ही नहीं है बल्कि आज खेती के साथ पशुपालन हम किसानों की आय बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। पशुओं से हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं, जिसमें दूध भी है, जो केवल खाद्य पदार्थ या पीने का पदार्थ नहीं है बल्कि हम जैसे लाखों किसानों की आय का भी स्रोत है। जी हाँ, दूध से हम सब अपने परिवार के लिए आय भी अर्जित करते हैं। साथियों, आज 1 जून है,

पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन हम इस विषय पे जरूर बात करेंगे। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है और इसके पीछे हैं हमारे मेहनती किसान और पशुपालक। जी, हम अपनी ही तो बात कर रहे हैं। गाय, भैंस और अन्य दुग्ध पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आज हमारे कितने ही साथी सुबह दूध बेचते हैं, दिन में खेती करते हैं और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। वैसे क्या आप जानते हो, दूध और पानी का भी आपस में संबंध है। अरे भाई, यदि पशु को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो दूध उत्पादन कम होगा, पशु का स्वास्थ्य खराब होगा, चारे की गुणवत्ता प्रभावित होगी। एक दुधारू पशु को प्रतिदिन बड़ी मात्रा में स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हम केवल खेती की ही नहीं बल्कि दुग्ध उत्पादन की भी बात कर रहे होते हैं। आज हम विश्व दुग्ध दिवस मना रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये 2001 से हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है किसान साथियों, क्योंकि डेयरी का काम हमारे लिए एक आय का स्रोत है। ये दिन देशों, संगठनों और समुदायों को एकजुट करता है ताकि कृषि, आर्थिक विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पर दुग्ध क्षेत्र के प्रभाव को पहचान मिले। वैसे साथियों, जब दूध की पहचान की बात होती है तो सबसे पहले हमें याद आती है हमारी गौ माता। जी हाँ, उन्हें हम माँ तो मानते ही हैं पर उनके अंग अंग में हमारी हर खुशी विराजती है और उनको पूजन करने से जो खुशी मिलती है वो कहीं और कहाँ मिलती है। तो चलो आज गौ माता को भी याद करते हैं क्योंकि विश्व दुग्ध दिवस है। तो पूजूं गौ माता चरण ताकि अंग अंग खुशी विराजे।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक अपनी बहन सोमा जैन के साथ, और अब हम बात करेंगे खेती की दुनिया में आए एक नए बदलाव की। ये बदलाव है नई जीनोम एडिटेड धान की किस्म का, जिन्हें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ये किस्में अधिक उत्पादन, कम पानी की आवश्यकता और मौसम की चुनौतियों से बेहतर मुकाबला करने की क्षमता के लिए चर्चा में है। आज मौसम लगातार बदल रहा है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बहुत गर्मी, किसानों की लागत बढ़ रही है। ऐसे में समय में नई किस्मों की आवश्यकता बढ़ गई है। अगर सरल भाषा में समझें तो जीनोम एडिटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें वैज्ञानिक पौधों के अपने गुणों में सुधार करते हैं, जैसे किसी किताब में एक शब्द की गलती सुधार दी जाए। इस तकनीक का उद्देश्य है बेहतर उत्पादन, कम पानी में खेती, अधिक सहनशीलता। ध्यान रखना साथियों, नई तकनीक को समझकर अपनाने वाला हमारा किसान साथी भविष्य की खेती में आगे रहेगा। नई सोच, नई तकनीक और नई किस्में ही भविष्य की समृद्धि खेती की पहचान है। हमारे यहाँ आलू और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। वैज्ञानिक अब ऐसे जीनोम एडिटेड सरसों के बीज तैयार कर रहे हैं जिसमें तीखापन कम होगा और जो बीमारियों से खुद लड़ सकेंगे। आलू के ऐसे बीज आ रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज में अधिक समय तक बिना खराब हुए टिकेंगे। इसलिए जब ये बीज आए तो आप इन्हें ज़रूर अपनाएं, झिझके नहीं, क्योंकि ये खेती को कम लागत में डबल मुनाफे वाले हाईटेक खेती है। भाई, हाईटेक तो रहना ही पड़ेगा और जानकारी भी अपने पास रखनी पड़ेगी, तभी चीज़ें बदलेंगी। तो चलो इसी बात पे आपको कल के मौसम की जानकारी दे देते हैं। कल मुख्य रूप से साफ आसमान साफ रहेगा और गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा और तेज धूप भी पड़ेगी, इसलिए अगर बाहर निकले तो धूप से अपना बचाव ज़रूर करें। तो साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, पर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी। हमें इंतज़ार रहता है आपके खतों का। बस याद रखना कि जल है तो फसल है, जल है तो पशुधन है, जल है तो दूध है, जल है तो जीवन है, और सच है कि जल है तो कल है। तो इस कल के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जल को बचाएं, क्योंकि अगर जल नहीं बचेगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। और हाँ, ध्यान रखना, दूध में आज भी वो ताकत है जो किसी और चीज़ में कहाँ, इसीलिए बच्चों को समय से दूध ज़रूर देते रहें और विश्व दूध दिवस को यूँ ही मनाएं। साथ ही साथ वर्षा जल का संचयन, जिस पे आज हमने बात करी, उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा।

आज हमने जानकारी ली कि कैसे हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, तो उस जानकारी का भी लाभ लीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, स्वीकार करें। राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, प्रस्तुत करता थी सोमा जैन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक श्रोताओं को, भाई बंधुओं को कल्पना सरकार का नमस्कार। और श्रमिक भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? आंधी तूफान बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है ना, नरमी आई है ना, तपती झुलसती गर्मी से राहत जो मिली है। साथ ही मौसम अच्छा होता है ना, सुहाना होता है, तो बच्चों के साथ घूमने का दिल भी करता है, खुशी मिलती है। वैसे देखा जाए तो बच्चों से ही परिवार भरा भरा सा लगता है। हर माता पिता का यही तो चाहत होती है, बच्चे हैं तो वो है ना। और बच्चों की दुनिया के आस पास ही उनकी दुनिया सिमटी रहती है। बच्चे उनकी जिंदगी जो होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चे होते हैं, और वो अनमोल होते हैं उनके लिए। वे इंतहा प्यार करते हैं साथियों, बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको याद है जबलपुर के नर्मदा नदी के बरगी बांध में क्रूज कैसे पलट गया था? अचानक मौसम के बिगड़ने से दर्दनाक हादसा हुआ था, कई लोग मारे गए थे। उसी में एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही थी। आपको भी याद होगा कि एक माँ अपने बच्चे को जान से बचाने के लिए उसे अपने लाइफ जैकेट के अंदर छिपाकर सीने से इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि उनकी मौत के बाद भी उनकी पकड़ नहीं छूटी। ऐसी होती है माँ की ममता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पापा जो बच्चे के होते हैं वो प्यार नहीं करते बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं, उनके हृदय बिना बच्चों के लिए धड़कते हैं साथियों। लेकिन बच्चों की परवरिश करना इतना आसान नहीं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं आजकल के समय में, तो कुछ ज़्यादा ही आता है। लेकिन धैर्य समझदारी से बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, बच्चों के साथ बच्चा बनकर समझना पड़ता है उन्हें। वैसे भी उनकी भावना को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे गलती करें आप डांटें, नहीं डांटें, नहीं डांटने से ज़्यादा आप उन्हें समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, है ना, क्योंकि डांटने से उनके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो जीवन में आगे बढ़ने से कतराते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें समझाते हैं तो वो उनके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। हाँ, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं साथियों, तो उनसे राय भी लें, उनकी पसंद नापसंद को भी जानें। हो सकता है कि वो बच्चे हैं, बच्चे जैसे ही अपनी राय दें तो सुने उनकी बात को, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बेटा ये भी मेरा विचार है, इसको इस बार हम लागू करते हैं, यदि मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो अगली बार आपकी राय हम ले लेंगे। इससे होता ये है ना, बच्चों की जो शिकायत होती है ना कि माता पिता ध्यान देते ही नहीं है, बच्चों को कुछ समझते ही नहीं है, तो बच्चे समझेंगे कि उनके जीवन में माता पिता का क्या महत्व है, माता पिता के जीवन में बच्चों का क्या महत्व है। और हाँ, एक और बात साथियों, आजकल के जो अभिभावक होते हैं ना, अक्सर उनके मुंह से सुना होगा आपने,

कि भाई आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, मोबाइल पर लगे रहते हैं। हाँ मानते हैं हम साथियों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल से हटा भी तो सकते हैं। बेशर्त आपका अपना ध्यान भी मोबाइल से स्क्रीन से हटाना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उनके साथ समय बिताना होगा। साथियों समय बिताने के लिए बातें के अलावा आप कलात्मकता की और भी ले जा सकते हैं। देखिए हमारी श्रमिक बहन श्रमिक भाई, उनके अंदर प्रतिभा की तो कमी होती नहीं है, है ना, और कला में तो माहिर होते ही हैं, है ना। ऐसे में यदि देखिए सफ़ेद कागज़ दीजिए, रंग ले लीजिए, आप उसमें कुछ कलाकृति बनाइए, आपको देखते ही देखते बच्चा भी उसमें आ जाएगा, रंग भरने लगेगा तो उसका मन लग जाएगा, तो मोबाइल से उसका ध्यान हट जाएगा। इसी तरह गाना नृत्य यदि आप करते हैं तो बच्चा भी उसको देख के सीखेगा। और ये सब चीज़ें ना साथी उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों साथियों पता है माता का स्नेह देखभाल से जहाँ बच्चों को भावात्मक सुरक्षा मिलती है, वहीं पिता का अनुशासन उन्हें दुनिया का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाता है। दोनों बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और पता है बिना स्वार्थ के माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं। जब बच्चों को प्यार मिलता है ना साथियों, तो बच्चे जीवन में आगे ना बढ़े हो ही नहीं सकता। मानसिक रूप से ऐसे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। फिर घर का माहौल अच्छा होता है, प्यार से भरा होता है ना, तो उनका व्यक्तित्व भी वैसे ही बनता है। अच्छी सोच वाला, अच्छे आचरण वाला, नेक दिल वाले होते हैं ऐसे बच्चे। और एक और बात कहेंगे साथियों आपसे, बच्चे को बच्चा ही रहने दीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं उन पर मत थोपिए। ये कहना तो छोड़ ही दीजिए, अक्सर माता पिता कहते हैं ना कि मजाल है कि हमने माता पिता की अपने माता पिता की बात ना सुनी हो, ऐसा बोला हो। भई साथियों बच्चे आजकल के अलग हैं, पसंद ना आए उन उसका कहने का तरीका बदल दीजिए। अब ये कहिए ना, यदि तुम ऐसा करते तो अच्छा लगता, चलो इस बार नहीं कर पाए, अगली बार आप ऐसा करना, तो हो सकता है बच्चा अगली बार से ये गलती ना करें। साथियों पता है माता पिता जो होते हैं ना, बच्चों को सिखाते सिखाते बहुत कुछ रोज सीखते हैं, चुनौतियां आती हैं, इसके बावजूद भी ये बच्चे उनके दिल के टुकड़े होते हैं, उनका जीवन होता है ना। देखिए साथियों इसलिए तो कहते हैं बेटा बेटी हो उनमें अंतर मत कीजिए, बच्चे आपके दिल के टुकड़े हैं, आपका दिल है, तो उन्हें पढ़ाइए, अच्छा पालन पोषण कीजिए जो कि आप करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, है ना, क्योंकि ये बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं आपका भी है, उनका उज्जवल जीवन तभी तो होगा। और हाँ श्रम की भट्टी में तो मत झोंकिए, बाल श्रम वैसे भी कानूनी अपराध है, क्योंकि देखिए मन के मासूम होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए ना।

भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे निश्चल बच्चे। साथियों, इस विषय में ही तो बात कर रहे थे कि अभिभावक बच्चों का पालन पोषण निस्वार्थ होकर करते हैं, कई चुनौतियों का सामना भी करते हैं, सीखते भी हैं, केवल आंखों की नींद का बलिदान नहीं करते बल्कि अपने सपनों का, इच्छाओं का भी गला घोट देते हैं। कभी कभी बच्चों की चाहत के आगे वो सब कुछ छोड़ देते हैं। स्वयं भूखे रहकर कम खाकर जीवन जी लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको कष्ट होने नहीं देते। आज का दिन साथियों, बच्चों के प्रति माता पिता के निस्वार्थ समर्पण, जीवन भर का बलिदान, उनके द्वारा किया गया अमूल्य प्यार, सुरक्षा के लिए धन्यवाद अदा करने वाला दिन है। जी हाँ, आज हम वैश्विक अभिभावक दिवस भी मना रहे हैं। इसके जरिए परिवार समुदाय को बच्चों के स्वास्थ्य विकास पालन पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। स्वास्थ्य, इससे ध्यान आया साथियों, बच्चों का सबसे सर्वोत्तम आहार कौन सा है? माँ का दूध है ना। नवजात शिशु के लिए प्राकृतिक का सबसे उत्तम सुरक्षित संपूर्ण आहार है। अब प्रसव के बाद शुरुआती दिनों में एक गाढ़ा पीला सा पदार्थ निकलता है ना साथियों, जिसे तरल सोना भी माना जाता है। ये बहुत अच्छा होता है शिशु के लिए, क्योंकि इससे शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्वों का बिल्कुल सही संतुलन होता है, जो शिशु को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सांस, पेट के संक्रमण, एलर्जी, अस्थमा, अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करता है। फिर ये हल्का भी होता है, जिससे नवजात शिशु आसानी से बचा सकता है। तभी तो कहते हैं, जन्म से लेकर केवल 6 महीने तक माँ का दूध। समझे आप भाई, समझदार तो आप हैं ही, है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आप बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें दूध पिलाना छोड़ दीजिए। नहीं, डेयरी का दूध पिलाइए, इसे भी संपूर्ण आहार माना जाता है। इसको पीने से बहुत सारे लाभ हैं साथियों, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम, फास्फोरस का खजाना है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। हमारी कुछ बहनें होती हैं ना, समय से पहले उनकी हड्डियां कर कर की करने लगती हैं, दांतें हिलने लगते हैं, तो भाई दूध नहीं पीती हैं वो ऐसी बहनें, तो दूध पीजिए, है ना। फिर इसमें

प्रोटीन की मात्रा भी उच्च मात्रा में पाई जाती है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और बेहतर शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को पकड़ने जाएंगे तो आपकी मांसपेशियां ही तो काम आएगी, तो दूध ज़रूर पीजिए। इसके अलावा इसमें विटामिन B12, B2 होते हैं ना, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, मस्तिष्क के बेहतर कार्य करने में सहायक भी करता है, यानी दिमाग अच्छी तरह से काम करे इसमें वो तत्व पाए जाते हैं। और आजकल तो साथियों बहनें ये नहीं कह सकती भाई दूध पीने से हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, लो फैट वाला भी दूध मिलता है बाजार में, जिसको पीने से लंबे समय तक पेट भरा भरा सा महसूस होता है, जो वजन को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। और हाँ, एक और बात, कुछ बहनों के बाल रूखे सूखे बेजान से होते हैं, भाइयों के भी होते हैं, तो भाई हम तो ये कहेंगे दूध पीजिए, इसमें मौजूद विटामिन और प्रोटीन बालों को चमकदार बनाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो सेहत बनाइए, स्वस्थ रहिए और गीत भी साथ साथ सुनते रहिए। साथियों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि सुमन कल्याणपुरी महासंगीतकार गायिका हमारे बीच नहीं है, तो क्यों ना आज उनके द्वारा गाया ये गीत सुन लें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

सच में साथियों, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हैं गीतों के माध्यम से सदाबहार गीत, और हम हमेशा ये गीत गुनगुनाते रहेंगे, थिरकते रहेंगे ऐसे गीत के गीतों में। तो उनके गीत के बाद आप सफ़र को आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का। साथियों देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि देसी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, तो आज घरेलू नुस्खों में ना हम सत्तू की बात करेंगे। सत्तू का शरबत, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर रहता है, और गर्मियों में शरीर को तुरंत ऊर्जा और ठंडक प्रदान करता है। जी हाँ साथियों, गर्मियों में इसका शरबत पीने से शरीर का तापमान ना तुरंत कम हो जाता है, लू से हमें बचाता है, और इसे पावर हाउस भी कहते हैं ऊर्जा का। जी हाँ, इसमें ना जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। फिर पाचन आदतों के लिए भी उत्तम आहार ये सत्तू का शरबत है। इसमें उच्च फाइबर पाया जाता है, प्रीबायोटिक्स पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। और यदि आप मोटे हैं, वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो उसका शरबत पीजिए। और डायबिटिक जो पेशेंट पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह रोगी होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित होता है। और त्वचा वाले बालों के लिए जैसे का दूध आप काफ़ी अच्छा होता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट त्वचा में निखार लाता है। खिला खिला खिली खिली सी त्वचा दिखती है आपकी, और बाल मजबूत होते हैं, कोई पकड़े तोड़ने की कोशिश करे तो टूटेगा नहीं, इतने मजबूत बन जाते हैं। जी हाँ साथियों, बनाए कैसे सत्तू का शरबत? बहुत अच्छा आसान है साथियों। देखिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, पानी नहीं तो छाछ भी चलेगा। उसमें 1-2 चम्मच सत्तू डालिए, उसे घुमाइए, उसमें हल्का सा काला नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस मिलाकर तैयार है भाई ताज़ा शरबत, पीजिए। आप इसे पराठे के साथ भी ले सकते हैं, हालांकि इन दिनों गर्मी है, पराठे मत लीजिए, रोटियां, हल्का खाना ही खाइए, लेकिन ये शरबत आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, बातों बातों में ना आज का प्रश्न तो पूछना भूल ही गए, पूछें, चलिए बताइए, हमारे देश के 6ठे राष्ट्रपति कौन थे? हिंट आपको चाहिए? देखिए, इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, वहां से निकलकर देश के सर्वोच्च संवे

वैधानिक पद तक पहुंचना उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को बताता है। हाँ, हम समझ गए हैं, हमारे जो श्रमिक साथी हैं ना, बहुत समझदार हैं, वो जान गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी की, देश के 6ठे राष्ट्रपति, भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली आदर्शवादी नेताओं में से एक थे। साथियों, जब वो मात्र 18 साल के थे ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। देश की आज़ादी के लिए वो कई बार जेल तक गए, और जब उनके अन्य देशभक्तों के प्रयासों से देश आज़ाद हुआ, तब भी वो सक्रिय रूप से देश के विकास के लिए राजनीति में आ गए, और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे, और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। और साथियों, उनकी प्रशासनिक क्षमता बेहद अच्छी थी। जब वो राष्ट्रपति बने, तब वो 74 वर्ष के थे और इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। जी हाँ, युवा व्यक्ति थे। साथियों, वे जब पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी और साहसिक मिसाल भी देश के सामने पेश की। निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत प्रणाम। साथियों, हाँ, आपसे एक वादा भी हम चाहते हैं। उन जैसा तो देखिए बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर तो चल ही सकते हैं, है ना? साथियों, देखिए, मार्ग से याद आया, राह से याद आया कि देखिए, कुछ दिन पहले ना तेज आंधी तूफान आया था, मुश्किल से 1-2 दिन हुए होंगे। हुआ यूं था कि उस दिन हम भी स्कूटी से बाजार जा रहे थे। रास्ते में बाप रे बाप, इतनी तेज आंधी तूफान आया कि आंधी तूफान में हम घिर गए। एक इमारत के नीचे हमने शरण ली। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने एक थैला पकड़ा हुआ था। हमने कहा, अम्मा ये थैला यहाँ रख दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ये इससे नहीं रखूंगी, ये तो मेरी पोती के लिए, उसमें गुड़िया खरीदी है। मतलब पोती के लिए? बोला, हाँ भाई, मेरी पोती जब से आई है ना, मेरे लिए बहुत खुशी होती है उसको देख के, क्योंकि आते मुझसे लिपट जाती है। साथियों, और जब वो उसका जन्मदिन हुआ था, तो मैंने उसके लिए गाना भी गाया था, मेरे घर आई नन्ही सी परी। तो मैंने कहा, आप ये गाना सुनना चाहेंगी? बोला, उन्होंने कहा हाँ, तो ठीक है, आपको रेडियो सुनना होगा। तो उन्हीं की पसंद पर, उन्हीं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये अम्मा और आप सब इस गीत का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, लेकिन आप इस गीत का आनंद लेते रहिए।

एक मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाई ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाई का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

0: the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगर केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुनीता रानी से वार्ता, जीवन का आधार है माता पिता।
1: जीवन का आधार माता पिता। परिवार बालक के जीवन का प्रथम सामाजिक विस्तार होता है और माता पिता उस परिवार के स्तंभ होते हैं। बालक के जीवन का आधार माता पिता होते हैं, इसलिए यह कहा भी गया है कि मनुष्य वैसे ही होते हैं जैसे उनके माता पिता उन्हें बनाते हैं। हर बालक भविष्य का जिम्मेदार नागरिक होता है और किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के समन्वित प्रयास का परिणाम होता है। इसलिए बच्चों को समुचित शिक्षा उचित समय पर मिले, इसकी जिम्मेदारी माता पिता पर होती है। बालक की रुचि, संस्कार एवं मूल्यों में उसके परिवार, वातावरण एवं परंपराओं का योगदान होता है। इसलिए घर की सुरक्षित चारदीवारी बालक की प्रथम पाठशाला कही जाती है और इस मौज मस्ती की पाठशाला में बालक अनायासी देख सुनकर बहुत कुछ सीख जाता है और माता पिता रूपी शिक्षकों द्वारा उसके व्यक्तित्व की आधारशिला रखी जाती है। धीरे धीरे बड़ा होने पर घर के बाहर समाज में वह वही व्यवहार करता है जो वह घर पर सीखता है। जैसे अगर बालक घर पर माता पिता को झूठ बोलते देखता है या दोहरा आचरण करते देखता है तो माता पिता के बहुत जोर लगाने पर भी उस बालक को सत्यवादी बनाना या कथनी और करनी की एकता का पाठ पढ़ाना माता पिता के लिए दुष्कर कार्य हो जाता है। इसलिए बालक में नैतिक मूल्यों के विकास का दायित्व माता पिता पर है। माता पिता जीवन का आधार हैं और नैतिक मूल्य व्यक्तित्व का, समाज का आधार हैं। यदि माता पिता बालक में सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सम्मान, विश्वास, श्रम जैसे मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं अपने व्यवहार में और जीवन में इन मूल्यों को जीना होगा। माता पिता के आचरण से बालक जिन मूल्यों की सीख लेता है उनकी नींव बहुत गहरी होती है और विकास बहुत व्यापक। बालक को सामाजिक मानकों एवं नैतिक मानवीय मूल्यों का पहला पाठ माता पिता के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। माता पिता की भांति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता। बालक जितना कमजोर होता है या वह किसी शारीरिक मानसिक चुनौती को झेल रहा होता है तो माता पिता का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए भी बहुत से बालकों ने धैर्य, आत्मविश्वास एवं कुशलता के साथ कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि उन्हें माता पिता की सही देखभाल, प्यार एवं सुरक्षा प्राप्त हुई। बालक अपनी जिज्ञासाएं सर्वप्रथम माता पिता के समक्ष ही रखता है। जो माता पिता सावधानी, धैर्य और ईमानदारी के साथ उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं उस बालक की सोचने की, मनन करने की शक्ति का निश्चय ही सम्यक विकास होता है। माता पिता जीवन का आधार होते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि माता पिता बचपन में जो हिदायतें देते हैं, जो सीख देते हैं, उसकी गूंज आजीवन बालक के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बनी रहती है, उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती है। जैसे लड़के काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बड़ों को जवाब नहीं दिया जाता, लड़कियों को घर का काम आना ही चाहिए, हमारे धर्म में कहा गया है कि इत्यादि इत्यादि। अर्थात माता पिता अपने आचरण तथा शब्दों के

0: द्वारा जाने अनजाने ही बालक के मन में धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय से संबंधित न जाने कितने पूर्व ग्रहों का निर्माण कर देते हैं और इन शब्दों की गूंज बालक को कभी गलत मार्ग पर जाने से रोकती है तो कभी तटस्थ राय देने में या उन्मुक्त एवं स्वतंत्र सोच विकसित करने में बाधक भी बनती है। माता पिता के शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बालक के पास सही शब्द पहुंचे यह माता पिता की जिम्मेदारी है। आज यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, इंटरनेट जैसे उपकरण भी कम ताकतवर नहीं हैं। टीवी कार्यक्रम देखकर बच्चा पात्रों की भाषा भी ग्रहण करता है, उनके अभिनय या क्रियाओं का अनुसरण भी करता है, जो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक और कभी कभी घातक प्रभाव भी डालते हैं। समस्या दोहरी इसलिए है कि बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए माँ बाप को समय देने की जरूरत है और माताओं के कामकाजी हो जाने के कारण आज माता पिता के पास सबसे ज्यादा कमी समय की ही है। बच्चों की सबसे बड़ी भावनात्मक एवं मानसिक आवश्यकता माता पिता का समय है, जिसका स्थान टीवी, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, महंगे खिलौने कोई नहीं ले सकता। माता पिता जीवन का आधार हैं, इसलिए वह ये भी अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे माता पिता के अधूरे सपनों को साकार करने का माध्यम नहीं होते, वरन उनके अपने भी कुछ सपने होते हैं, उन्हें अपनी उड़ान भरने की अनुमति होनी चाहिए। बालक की योग्यताओं और क्षमताओं को पहचाने बिना माता पिता कई बार बच्चे पर इतना दबाव डाल देते हैं कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने और परिणाम क्या होता है कि आत्महत्या जैसे घातक परिणाम हमारे सामने आते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि बालक के जीवन का आधार माता पिता हैं, अतः उनका यह दायित्व है कि वे बालक को हरफन मौला नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक और बेहतर इंसान बनाएं। गोर्की का कथन है, यह आत्मविश्वास रखो कि तुम पृथ्वी के सबसे आवश्यक मनुष्य हो, और यह विश्वास माता पिता ही बच्चों के भीतर उत्पन्न कर सकते हैं और उसे निरंतर अच्छाई की ओर अग्रसर कर सकते हैं ताकि यह दुनिया और भी बेहतर बन सके।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनीता रानी से वार्ता, जीवन का आधार है माता पिता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: बोल बोल के थक गया,
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी।

0: ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया ना किड बैग।
0: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
6: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
6: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
5: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति

0: ती जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब

में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी

0: कार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: Hey guys! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्रिय श्रोताओं और साथियों को आपके रेडियो होस्ट सागर जग्गी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें हम स्मरण करते हैं उन महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं का, जिन्होंने अपने त्याग, साहस और समर्पण से भारत माता का गौरव बढ़ाया। हमारी ये पावन धरती केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि असंख्य बलिदानों, संस्कृतियों, परंपराओं और प्रेरणादायक गाथाओं का जीवंत इतिहास है। तो आइए श्रोताओं, अपनी माटी की महक और अपने देश की गौरवशाली विरासत को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, 1 जून के अवसर पर हम स्मरण कर रहे हैं भारत के छठे राष्ट्रपति, महान जन नेता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्त प्रहरी नीलम संजीव रेड्डी जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के इल्लूर गांव में हुआ था। श्रोताओं, बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था, तब युवा रेड्डी भी उससे प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर देश की आजादी के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण कई बार जेल भी गए। श्रोताओं, उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण, त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संयुक्त आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उनका मानना था कि भारत की असली शक्ति उसके गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी की एक विशेष पहचान उनकी सादगी थी। श्रोताओं, उच्च पदों पर रहते हुए भी उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वे आम लोगों से सहजता से मिलते थे और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते थे। यही कारण था कि वे जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। सन 1967 में वे लोकसभा के अध्यक्ष बने। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूत करने का कार्य किया। उनकी निष्पक्षता और गरिमापूर्ण आचरण की आज भी मिसाल दी जाती है। इसके बाद भारतीय राजनीति में वे एक ऐतिहासिक क्षण आया जब सन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। यह उनके प्रति राजनीतिक दलों और देशवासियों के विश्वास का प्रमाण था।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। हम बात कर रहे थे नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। श्रोताओं, राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल अनेक राजनीतिक उतार चढ़ावों का साक्षी रहा। उस समय देश में गठबंधन राजनीति का दौर था और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय लेने पड़े। नीलम संजीव रेड्डी ने हर परिस्थिति में संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राष्ट्रपति का पद

उस शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी, संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है। उनका जीवन श्रोताओं में यह सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सादगी और जनसेवा के मूल्य कभी भी पुराने नहीं होते।

श्रोताओं, आज जब हम नीलम संजीव रेड्डी जी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम माना, ना कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन। 1 जून 1996 को नीलम संजीव रेड्डी जी का निधन हुआ, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आदर्श लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा और राष्ट्रहित के लिए उनका समर्पण आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रिय श्रोताओं, मेरी माटी मेरा देश केवल महान व्यक्तित्वों को याद करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर भी है। नीलम संजीव रेड्डी जी का जीवन हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, संविधान का सम्मान करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे और देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

0: इसी श्रद्धांजलि के साथ हम नीलम संजीव रेड्डी जी को छत छत नमन करते हैं।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन कहती है श्यामे गजल सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम श्यामे गजल।

सुकून सिर्फ एक शब्द हुआ करता था, लेकिन तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे सुकून से रूबरू मुलाकात हो गई हो। आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन से, ये गजल आवाज थी जगजीत सिंह की। गीतकार थे फैज अनवर और संगीतकार निखिल विनय। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, जो कि है फिल्म निखा से गुलाम अली की आवाज में, जिसको लिखा है हसरत मोहानी ने और संगीत है गुलाम अली।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है।

आप सुन रहे थे फिल्म नाम से ये गजल, आवाज थी पंकज उदास की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब सुनते हैं फिल्म बाजार से ये गजल तलत अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसको लिखा है मखदूम मोहिनुद्दीन ने और संगीत है खयाम का।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

आप सुन रहे थे फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं से ये गीत। आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। गीतकार थे मजरू और संगीतकार खयाम। श्रोताओं, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम चित्रपट संगीत समर्पित है हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की पावन स्मृति को, जिनका 31 मई को निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय संगीत जगत ने एक मधुर, संवेदनशील और अत्यंत सुसंस्कृत स्वर को खो दिया। सुमन कल्याणपुर ने अपने लंबे संगीत सफर में अनेक ऐसे गीत दिए जो आज भी श्रोताओं के हृदय में उसी ताजगी और मिठास के साथ बसे हुए हैं। उनकी गायकी में सरलता, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और सुरों की अद्भुत शुद्धता का अनोखा संगम था।

श्रोताओं, 1950 और 1960 के दशक से लेकर आगे के वर्षों तक उन्होंने अपनी विशिष्ट गायकी से श्रोताओं के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी आवाज में सहजता, मधुरता और भावों की गहराई का अद्भुत संगम था। प्रेम, विरह, उल्लास और संवेदना, हर भाव को उन्होंने अपने सुरों के माध्यम से जीवंत कर दिया। आप सुन रहे थे गीत अप्रैल फूल से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, जिसको लिखा था असरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का।

आप सुन रहे थे ये गीत तिल एक मंदिर है से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार शंकर जयकिशन। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर उन चुनिंदा गायिकाओं में थी जिनकी आवाज की मिठास, सुरों की शुद्धता और भावों की सहज अभिव्यक्ति ने लाखों श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया। उन्होंने हिंदी, मराठी तथा अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए और संगीत प्रेमियों को अनमोल धरोहर प्रदान की। इसी के साथ यह कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग

0: को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी

0: की अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358

0: मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines.

0: मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुजाकिरात किए, जिनमें तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकिरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहिल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जाम माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इतला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई

0: कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिले ज़िक्र अक्सर तब्दील के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट यूजी 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फरोग देने की अहमियत की तौसीक की है, ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है।

भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048123717117, 2371717106 और 2331

0: 7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताओ।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताया तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार। जी
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है COPD एस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिजम्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल

0: से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे
0: देख
1: कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 40 डिग्री 37 डिग्री से ज़्यादा होना था वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं। और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है।
3: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र

0: जी
1: जी कनक जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
1: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है। लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
2: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
2: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
2: और वो भी खतरनाक
3: हो, वो भी खतरनाक होता है।
2: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करते?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं

0: हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
1: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
0: जी,
3: हाँ कनक जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ जी जी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह AC चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: IMD जो,
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से इन्होंने पूछा है।
4: हाँ।

0: वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ पे बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो IMD जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक IMD का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है। और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से हमने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ के मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2-2:30 के आसपास, 3-3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2-2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, दो दो दो 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो
1: चार
0: आपका
1: बजे तक
0: अवॉइड करना
1: मतलब
0: चाहिए।
1: 11 से 4 तक
0: हाँ
1: अवॉइड करना चाहिए
0: यस
1: जहां तक हो सके।
0: हाँ
1: अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी मैं रवि जवालिया जगमीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन पे दत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: ये
3: रहे।
1: तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच
3: आसपास
1: बीच में
3: कर
1: आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा जो
3: बिल्कुल
1: गोद का बच्चा
3: बिल्कुल
1: है
3: बिल्कुल
1: उसके लिए
3: सुस्तीपन सुस्तीपन दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है बिल्कुल, अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, सब
1: ढीले
3: ये
1: कपड़े
3: बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के
1: कपड़े।
3: फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।

0: नमस्कार
1: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे।
2: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं। तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका उसका प्लेन में भी रहेगा, जब जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
2: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया। तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, हेलो मेरी पसंद का। तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अनिंद्र सिंह, संपादक होगा विशेषता शर्मा का।

0: हेलो मेरी पसंद।
1: प्यारे साथियों, ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। मन की दहलीज पर जब भी स्मृतियों का कोई झोंका आता है तो एक अनकही सी सिहरन जगा जाता है, और जब उन यादों को किसी प्रिय धन का साथ मिल जाए तो वो पल महज एक वक्त नहीं रहता बल्कि उम्र भर के लिए एक मुकम्मल एहसास बन जाता है ना? तो आइए इसी एहसास को फिर से जगाते हैं संवेदना और सुरों के इस सुंदर मोड़ पर। स्वागत है आपका हमारे

0: और आपकी भावनाओं के इस साझा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, ये कार्यक्रम एक खुला आमंत्रण है आपके भीतर छुपे उस एकांत को आवाज देने का जो रोजमर्रा के कोलाहल में कहीं थम सा जाता है। आज हम यहाँ सिर्फ गीत नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी पसंदीदा धुनों के बहाने आपके जीवन के किसी अनछुए प्रसंग को टटोलेंगे। आपके कंठ से निकली एक फरमाइश आज न जाने कितने हृदयों में पुरानी स्मृतियों के बंद कपाट खोल देगी। तो आइए इसी दूरी को पाटते हैं। अपने भीतर के उस ठहराव को पहले जरा महसूस कीजिए, अपनी पसंद के उस एक खास नगमे को याद कीजिए और फिर क्या, सीधे हम तक पहुंचा दीजिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी पुकार की। चलिए इस बेहद खूबसूरत और संगीत में संवाद का आरंभ करते हैं और देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे श्रोता कौन से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: आपका परिचय?
1: मेरा नाम कृष्णा यादव है।
0: कहाँ से फोन कर रही हैं आप हमें?
1: मैं पीएनटी कॉलोनी वीआईपी रोड आगरा।
0: कृष्णा जी, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आज किस गीत के लिए आपने हमें फोन किया है?
1: दीपक संग पतंगा नाचे आन मिलो सजना पिक्चर का गीत है ये।
0: आपने ये फिल्म देखी है?
1: हाँ, मैंने कई बार देखी है।
0: तो फिल्में देखने का शौक है आपको?
1: हाँ, बहुत बचपन से।
0: कृष्णा जी, जैसे आपने हमें बताया कि आप एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो आपको अपनी पसंद के गीत सुनने का, अपनी पसंद की फिल्में देखने का आप समय कैसे चुराती हैं?
1: अब तो घर पे टीवी पे सब चीज उपलब्ध है, तो चलते चलाते लगा लेती हूँ टीवी और देखती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: यानी काम करते करते आप मनोरंजन भी करती रहती हैं। बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी हमें ये जानकर, और आपकी बात सुनकर हो सकता है बहुत सारी हमें सुनने वाली जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो भी प्रेरित होंगी और वो भी अपने जीवन में जो गीत संगीत की जगह है उसको जरूर देंगी।
1: हम आपकी आकाशवाणी के गाने सदा में लगाकर सुनते ही रहते हैं जब भी मौका मिलता है।
0: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर, आप हमें ऐसे ही सुनते रहिएगा और अभी फिलहाल सुनिए आप अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी, धन्यवाद।

0: आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कृष्णा जी की पसंद पर। आइए देखते हैं अगला फोन हमें कहाँ से आया है। हेलो
1: हेलो,
0: मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, मैं हम लालो से बोल रहा हूँ। नरेंद्र, बात पहले हो चुकी है आपसे हमारी?
0: जी मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, आपने हमें पहले भी फोन किया था।
1: जी जी, विशेषता जी बोल रहे हैं?
0: जी मैं विशेषता बात कर रही हूँ।
1: जी
0: नरेंद्र जी, और क्या क्या शौक है आपके? गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल सुनते हैं, किशोर कुमार के गाने सुनते हैं।
0: तो आज इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो सुना दीजिएगा, ओ मेरे दिल से।
0: ठीक है, किशोर कुमार की ही आवाज में ये गीत है।
1: हाँ।
0: किस फिल्म का है?
1: मेरे जीवन साथी का है।
0: आपके साथ साथ इस गीत को और कौन कौन सुनेगा?
1: जी सभी सुनेंगे, हम मित्र हैं, हमारे कुछ एक सौरभ लवानिया जी है।
0: जी
1: हमारे सब परिवार के बच्चे।
0: आप चाहें तो परिवार में जो लोग हैं उनके भी नाम हमें बता दीजिए।
1: जी शांत है, शिवम है, और हमारी श्रीमती जनु जी।
0: ठीक है नरेंद्र जी, आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी पत्नी सबके साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र जी की पसंद पर ये गीत। आइए देखते हैं अगला फोन हमें कहाँ से आया है। हेलो।
1: हेलो, मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ।
0: आपका नाम, आपका परिचय?
1: गुरदयाल सिंह।
0: गुरदयाल सिंह जी, आपका हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हाँ, बिल्कुल पक्का।

0: आवाज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है।
1: तो आप हमें इंग्लैंड से फोन कर रहे हैं?
0: हाँ, इंग्लैंड से, लेस्टर सिटी से।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आकाशवाणी आगरा सुनते हैं वहाँ पर?
0: हाँ सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं।
1: कैसे लगते हैं हमारे प्रोग्राम आपको?
0: बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी दूर बैठकर भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा, वो एक सॉन्ग है उपकार फिल्म का है, पुराना
1: जी,
0: मेरी देश की धरती
1: जी,
0: तो वो अगर हो तो देख लेना।
1: हाँ बिल्कुल, हम आपको गीत सुनवाएंगे गुरदयाल जी, लेकिन उससे पहले आप हमसे तो बातचीत कर लीजिए। आप भारत से इतना दूर हैं, कब से आप भारत से दूर हैं और इंग्लैंड में रह रहे हैं?
0: हमको हो गए 35 ईयर।
1: ये तो बहुत लंबा समय हो गया। भारत की याद आती है आपको?
0: हाँ, हर साल आते हैं, हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
1: आपके परिवार में और कौन कौन है जो आपके साथ इस गीत को सुनना चाहेंगे?
0: मेरी वाइफ है, बेबी और बेटी है साक्षी।
1: जी ठीक है गुरदयाल जी, आप अपनी पसंद पर सुनिए उपकार फिल्म का ये गीत।
0: ओके, थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गुरदयाल सिंह की पसंद पर उपकार फिल्म का ये गीत। आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन से हैं। हेलो
1: हेलो,
0: मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते, मैं आगरा से देव शर्मा बात कर रही
0: हूँ। देव जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: क्या करते हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: नाइन्थ।
0: तो अभी आप नाइन्थ में आए हैं या नाइन्थ क्लास आपने पास किया है?
1: नहीं, अभी नाइन्थ में आया हूँ।
0: तो कैसा लग रहा है आपको नाइन्थ में आकर?
1: अच्छा लग रहा है, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मजे भी आ रहे हैं।
0: अरे वाह, तो छुट्टियों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप?
1: बस ऐसे ही घर पे हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं।
0: क्या क्या खेलते हैं?
1: आकाशवाणी सुनते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने हमें बताया कि आप खेलते हैं, तो फोन पर गेम्स खेलते हैं या आप कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं?
1: मैं गिटार भी प्लेइंग करता हूँ और बास्केटबॉल क्रिकेट ये सब भी खेल देता हूँ।
0: अरे वाह, मतलब आपका म्यूजिक में भी शौक है और स्पोर्ट्स में भी। कौन से आपके पसंदीदा प्लेयर हैं बास्केटबॉल के?
1: लेब्रॉन जेम्स।
0: बहुत खूब, मैचेस देखते हैं आप?
1: हाँ, बहुत पहले देखता था लेकिन अब नहीं देखता।
0: अच्छा,
1: क्रिकेट के देख रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट के आईपीएल शुरू हो गए हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो क्रिकेट में भी आपको इंटरेस्ट है?
1: हाँ।
0: तो देव, आप तो बिल्कुल ऑलराउंडर हैं, मतलब स्पोर्ट्स में भी, म्यूजिक में भी, पढ़ाई में भी। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर?
1: इस फील्ड में मैं ज्यादा, मुझे लगेगा मेरा इंटरेस्ट है, मैं उस फील्ड के लिए तैयारी करूँगा।
0: यानी अभी तक आपने कुछ तय नहीं किया है? अच्छी बात है, इसमें आपको समय भी लेना चाहिए और ठीक से फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। देव, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गिटार बजाना मुझे पसंद है, इसलिए मैं एक हसीना दी सॉन्ग सुनूंगा कर्ज मूवी का।
0: ठीक है, हम आपको ये गाना जरूर सुनवाएंगे। आपके साथ साथ इस गीत को और कौन सुनेगा?
1: हमारी पूरी फैमिली सुनेगी, मेरी मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स।
0: ठीक है देव, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सुनिए कर्ज फिल्म का ये गीत और अगली बार हमें फोन करना मत भूलिएगा।
1: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे देव की पसंद पर ये गीत। आइए देखते हैं अगले श्रोता हमसे कहाँ से जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो नमस्ते, मैं सारावास से बोल रही हूँ।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: मैं गंभीरता शर्मा।
0: गंभीरता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गंभीरता जी, आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं।
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं आपके कार्यक्रम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। गंभीरता जी, मैं ये जानना चाहूंगी आप क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: आज हमारे कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: गीत सुनना है, फिल्म का नाम तो नहीं मुझे मालूम
0: जी।
1: सासुर तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ सारा साल है।
0: ठीक है गंभीरता जी, आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे गंभीरता शर्मा की पसंद पर ये गीत। साथियों, कितना खूबसूरत होता है ना ये एहसास कि हम सब अलग अलग जगहों पर हैं, अपने अपने कमरों में या तो अकेले बैठे हैं या अपने परिवार के साथ, लेकिन एक ही गीत ने हम सबको एक धागे में पिरो दिया। एक गीत जो हमारे मन में अनगिनत यादें जगा देता है। पर वक्त की जिद के आगे किसकी चली है जनाब, वक्त के आगे तो हम सब हार जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त आ गया है, इस वादे के साथ कि यादों का ये सिलसिला कभी धुंधला नहीं पड़ेगा और यूं ही चलता रहेगा। अगर आज आप अपनी पसंद हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो उदास मत होइए। अगली बार के लिए इस नंबर को अपनी डायरी में जगह दे दीजिए ताकि आप अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकें। चलिए चलिए, अब देर मत कीजिए, कलम उठाइए और नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0562-350-1852 यानी 0562-350-1852। हमारा दूसरा नंबर है 0562-297-0337 यानी 0562-297-0337। तो अगली बार हमें फोन करना भूलिएगा नहीं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से। चलते चलते बस इतना ही कि रास्ते में अगर कोई अच्छा गाना मिल जाए तो ठहर कर उसे सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी गानों से ही तो मुकम्मल होती है। और अब मुझे यानी रेडियो की विशेषता को दीजिए इजाज़त, और आप, जी हाँ आप ही, अपना बहुत बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद को। प्रस्तुत करता थे अनिंद्र सिंह, संपादक था विशेषता शर्मा का।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं देवशीष चक्रवर्ती से राग जोग में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से राग जोग में बांसुरी वादन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर

0: किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to